जिन्ना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए तनु उपजय मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखा सुखी उपजह दरगह पैंदा जाए रहाओ जन्म मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटिया गुरदर्शन देख निहाल थान थन अंतर रव रह।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया तजिया सब मान। पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुखी उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, पूरा सतगुर जे मिले।

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाहो, वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो, कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाहो, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ, मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ, निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ, हर जपिए आराधिय आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां, प्रीत लगी ते

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार बालक बिरद ना जानिया निचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाईऐ नेदा रायादार जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवै सांत एक मन एक ते आईऐ मन की लहे परांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात सदा सदा आराधी।

मन्य पूर राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया। श्री

पूरा थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियान सच सिर जियोन जहान नानक जपिया सच नाम सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वडभागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सोपर डिठा नाल जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी नगर निहाल।

सतगुरु की सेवा लाग जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ ज्यो कूकर हर काया तावै दै दिस जाए लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार जिसनो रखै सो रहै समर्थ पुरख अपार हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां घर दूजा।

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटों कुर्बान तेरे दर्शन कौ बलिहारण तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरत्या दरगह बैसन जाए करते हथ वडियाईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समर्थ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करण हार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ।

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख।

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पर्दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत।

अंबड़ कोई न सकई, हों किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावे तैं दे हुक्म।

गणत गण आवने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउं पिरावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ सबदरती मन वेदया हो सतबल हारे जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पेरी सालू नौ तनौ साचो मरे ना जाए नित रवै सोहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी तन मांडी है कपड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत महलड़ी सूती बूजना पाए हों सुती पिर जागना किसको पूछो जाए सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सिखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचा मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठिया डीठ आपे सागर बोए था आपे पारिया पार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार ने डरिया डर जानिया बाजगुरु गोबार आश्र करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे सुन लाए हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक ते तन मैल न लग गई सच कर जस्यो ताक नदर करे सच पाईए बिना मैं क्या साक जिनी सच पछाणिया से सुखिए जुगचार हमें तृष्णा मार कै सच

सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागै सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकस असनेह जल मैं जियो पाए कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुखणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देह रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए तां की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंखनू जो चुग दे सर तल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिलै सो मिलै जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजाए हों मैं मैल ना जाए सोहंग आप पिछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पिछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मनमुख सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवर ना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुलै भुलाई है भूली ठौर ना काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागनी ना प्रियंक समाए रहाओ पुली फिर दसंतरी पुली गृहता जाए पुली डूंगर थल चढ़ाए परमे मन डोलाए तरों विशुनी क्यों मिले गर्म उठी बिललाए विछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यो पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है पेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार सात अने आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार कर ही सो पिर पाया गुर कै हित अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हमै विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए
ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਆਪ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮਿਲੇ ਸਬਦ ਅਪਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤਬੰਧ ਪਕਰਨਾਰ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਹਉ ਮੋਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵੇਖ। ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਆਇਆ ਨਿਤ ਚਲਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖ। ਆਖਣ ਆਖੇ ਕੇਤੜੇ ਗੁਰਬਿਨ ਬੂਝਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਰਪੈ ਪਤ ਹੋਏ। ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੇ ਪਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਸਰਨ ਆਈ ਛੁੱਟੀ ਐ ਮਨਮੁਖੋਟੀ ਰਾਸ। ਅਹਿਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰ।

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वसया मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर निचल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आई है शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाद ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्दे हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा भाव न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन कोई परम पुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो।

सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हरसे तीरंग राता, प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर, गुरमुख वर लै जाता, नानक नाम मिलै वडियाई, गुर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा, सहजै नो सब लोई दी, बिन गुर पाया ना जाए, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, पेखी परम पुल आए, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाए, पाई रे गुरबिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजय, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाए पवै, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगति उपजय, सहज पैर प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाध लगाए, सहजे ही गुणी उचरै, भगत करे लिवलाए, सबदे ही हर मन वसै, रसना हर रस खाए, सहजे काल विडारिया, सशरण आई पाए, सहजे ही हर नाम वसया, सच्ची कार कमाए, सेवड भागी जिनी पाया, सहजे रहे समाए, माया विच सहजन उपजै, माया दूजै पाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किश होवै काज चित आवै ओस पार ब्रह्मो ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका कड़ी ना बैसन सोए चित आवै उस पर ब्रह्म तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोग प्यार चारे किलवख उन अग किए होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया चित आवै उस पर ब्रह्म तन निमख सिमरत तरिया। शास्त्र सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे तपित पीसर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में खटकर माते दुगने पूजा करता नाए। रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया रस भोगन विस्थार बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि चाए लग रहया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत भाइया साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देव दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, घाट न किन्ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी।

तन जो बन सो चित हरका नाम ना चित ही वन जा रहा मित्रा। बद्दा छुट्टै जित हरका नाम ना चित प्राणी बिकल भया संग माया। तन सो रत्ता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया। धर्म से ती व्यापार न कीतो कर्म न कीतो मित कहो नानक तीजै पहरै प्राणी। तन जोबन सो चित चौथे पहरे रहन कै वन जा रहा मित्रा। लावी आया खेत जां जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा। किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जां जम पकड़ चलाया। झूठा रतन हुआ दुआलै खिन मैं पया पराया। साई वस्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत कहो नानक प्राणी। चौथे पहरे लावी लुनिया खेत

मात पिता सुत ने हुक नेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कर कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटै गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जारिया मित्रा पर जो बन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जारिया मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस उलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंध ना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजे बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरैवन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्तु ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख हो

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरै मिल मेरे प्यारे प्राणे आधारे गुण साध संग मिल गावै नानक के स्वामी धार अनुग्रह मंत्र अंक समावै डखणा सो हंदड़ो हब ठाए कोय न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो विसारी है निमख नहीं टारी है गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंथ फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवे जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रपै कृपा कर पव जल तारी है डखना तूड़ी मजन साध खे साई थिए कृपालो लदे हब्बे थोकड़े नानक हर तन मालो शंत सुंदर स्वामी ताम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा जो तौ कीने अपने तिन्ना को मिलियो हे आपे ही आप मोयो हो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच्छ पुजाया बौण ना माया होया कर गै लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो शंत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो ना तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ ना जाय अकथ स्वामी सदकै जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोए जो मोहे माया चितलाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बने अवर ना कोए हर गुर शरण आई पाई है मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना मिन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हम मैं

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे दे वैले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटियै हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर। हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जागंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलायका। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाएका। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई। तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई। तू आपे आवरदा सब नी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इकाशाओ। आपो जे को पला कहाए नानक तां पर जापै जां पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया। त्रिग जीवन संसार तां कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे। दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे। तिन जम काल ना वे आपई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यो तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझे ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब कै रंग रह, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक साहेब प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच है, करमी पल्लै पाए। पौड़ी

दरखड़िया नाल खसमै रतिया माने सुख रलिया होंदे तान नितानिया रह निमाननिया नानक जन्म सकार था जेतन कै संग मिला पौड़ी। तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जल वताएंदा आपे विसे बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुद्दों बाहर किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जान

पाए, जब तब संयम भाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमर तो सब किलविख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दाल दो दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुआर। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सिओ, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा। सो भगवती जो भगवंतै जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवित मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल धोवै मन की जूठ ना जाए। सत्संग स्यों बाद रचाए, अंदिन दुखिया दूजै पाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथै उथै मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै, सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंज

गरीब अनाथ राख लियो ए, जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो ए। श्लोक महला तीजा। मनमुख मैली कामणी कुलखणी कुनार।

माज महला पंजवा सबे सुख पए प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरत नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाण जियो प्रभ मृणय की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास की है प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किशु ना जापै अपने संतां नु आप सहाई प्रभ भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वट पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलता था।

प्रभ समर्थ वड ऊचा पारा नौनद नाम परे भंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो।

पूर्ण पूर रहा सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सालाही सच्चै मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए न से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन निचलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वडभागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवै ओह अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नहि चलो अगमया पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तां त्रिभवन सूजै फिर ओह मर

माया मोहे जोहया जमकाले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए, बाणी वजाए शब्द वजाए।

अवर ना कोई, गुर प्रसाद करे नाम देवे, नामे नाम समावणे आ। तू आपे सच्चा सिरजनहारा, भगती परे तेरे भंडारा, गुरमुख नाम मिले मन पीजे, सह समाद लगावणे आ। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे, तुसा लाही प्रीतम मेरे, तुद बिन अवर ना कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावणे आ। आगमया गोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करै तू लह मिलाई, पूरे गुर कै शब्द तिहाई है, शब्द सेव सुख पावणे आ। रसना गुणवंती गुण गावै, नाम सलाहे सच्चे पावै, गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे सोभा पावणे आ। मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुवै जन्म सब बाजी हारी, अंतर लोभ महा गोबारा, फिर आवणे जावणे आ। आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिख तुर पाई, नानक नाम मिले पौ भंजन, गुर सबदी सुख पावणे आ। माज महला पंजवां घर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, आगमै गोचर सब ते उचा, गुर कै शब्द लिखावणे आ। हाँ वारी जियो वारी, कल मैं नाम सुनावने आ, संत प्यारे सच्चे तारे, वडभागी दर्शन पावने आ। रहाओ साधक सिद्ध जिसै को फिर दे, ब्रह्मे इंद्र त्याय निहरदे, कोट तीसा खोजै ता कहो, गुरमिल हिरदय गावने आ। आठ पहर तुद जापे पवना, धरती सेवक पायक चरना, खानी बाणी सर्ब निवासी, सबना कै मन पावणे आ। साचा साहिब गुरमुख जापै, पूरे गुर कै शब्द संजापै, जिन पिया से तृपता से, सच्चे सच्चा गावणे आ। तिस घर सहजा सोई सुहेला, आनंद विनोद करे सदकेला, सो धनवंत

तुद जेवड़दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे, तिस दरगह ठाक ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा, तू बेअंत वत मूचो मूचा, हाँ कुर्बानी तेरे वन्या, नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बाधा किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन तूटा, कौन कर्म कौन निह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिली है किन बिद बिछरै, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जे तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हम मैं बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण तूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख बिछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जे तावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, एक स्ते होयो अनंता, नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवां, प्रभु बनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुखदाता, तू करै सोई सुख पावण्या, हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावण्या, रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा, थान थनंतर तू है एको एक वरतावण्या, सगल मनोरथ

तोसा हर का नाम लै तेरे कुले न लागे गाल जियो जो सवरंदे साई है नरक ना सही पाई है तत्ती वाव न लगई जिन मन उठाया जियो सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने हार तन जिनी संजया सही गंभीर पार जियो हर अमे और साइन पीवी है मोह डिठे जन कै जीवी है कार्ज सब सवार लै नित पूजो गुर के पाव जियो जो हर कीता अपना तने गुसाई जापना सो सूरा प्रधान सो मस्तक जिसदे भाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया एह रस भोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कार लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हर तेरा थिर होवा सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की सरनाया लाए अंचल नानक तारिया नु जिता जन्मया पार जियो एको अंकार सतगुर प्रसाद माज महला पंजवा घर तीजा हर जप जपे मन धीरे रहाओ सिमर सिमर गुर देओ मिट गए पै दूरे सरन आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे झूरे चरण सेव संत साध के सगर मनोरथ पूरे घट घट एक वर्तदा जल थल महियल पूरे पाप बिनासन सेव्या पवित्र संतन की धूरे सब छड़ाई खसम आप हर ज पई ठरूरे करते किया तपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रता सच नाए हर वेखै सदा हजूरे बारह माहा माज महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम तेन दुदै ते बाहरी किते ना आवे काम जल बिन साह कुमलावती उपजै नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाइय विश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम सर्व सिंगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल ताम चेत गोविंद आराधिया होवे आनंद कणा संत जना मिल पाईऐ रसना नाम भणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा एक खेनु तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल महियल पूरिया रव्या विच वणा सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिनी रावया सो प्रभु तिन्ना पाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिशो हो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो पुत्र कलतर ना संग तना हर अवनासी ओहो पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोहो एक सहर के नाम बिन अगे लइए खोहे दैव सार विगुचना प्रभ ने अवर ना कोए प्रीतम चरणी

नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। माज महला पंजवा दिन रहन एको ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोई डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंत ना पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज उगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंतन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन ने मानी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानके हो सुवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुरदीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

नानक जग तू एका तवलहार पौड़ी, तू करता पुरख्या कम है, आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती, तू जाने जिन्हें उपाई है सब खेल तुमाती, एक आवे खजाए उठ बिन्ना में मर जाती, गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो से वो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती, तू आपे आप सुजान है वड पुरख बढ़ाती, जो मन चेत तुद ध्याय दे मेरे सच्चिया, बल बल हों तन जाती, श्लोक महला पहला।

रच रचिया तसै न जाने। अंधा अंध को माए जा भजै ता ठीकर होवै घड़त घड़ी ना जाए। नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार ना पाए महला दूजा। दें दे था वो दिता चंगा मन मुख ऐसा जानिए। सुरत मातो चतराई ता की क्या करे अख वखाणी है।

तू आपे खेल करे सब करते कै दूजा अख बखानी है जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूट सुजानी है पौड़ी तुदे आपे जगत पाए कै तुदे आपे तंदे लाया मोठ गौली पाए कै तुदे आपो जगत खुआया तिसना अंदर अगन है न तिपत भुखा तिहाया सहसा उस संसार है मर जमै आया जाया बिर सतगुर मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया सोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया श्लोक महला दूजा अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना पैरा बाजो चलना मेर हथा करना जीबे बाजो बोलना यो जीवत मरना नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना महला दूजा दिसै सुनिया जानिया सौ ना पाया जाए रोहला टुंडा अंदला क्यों गल लगै तहाए पह के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे नानक है सियाणिए इव कंत मिलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया हम मैं गर्व ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया ज्यो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया इकना बख्शै मेल लै गुरमती तुद लाया एक खड़े करे तेरी चाकरी विणना मैं होर ना पाया होर कार वेकार है एक सच्ची कार लाया पुत कलत कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया ओहे अंदरो बारो निर्मले सच्चे न समाया श्लोक महला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पै आलो कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर पार पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार बग्गा रत्ता पियला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवै अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मलमल तोवै अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने हमें भी दुख काले नानक गुरमुख हमें टुटै ता हर हर नाम ते आवै नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावै पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया सुख उठे रोग पाप कमाया हर खो सोग विजोग उपाय पाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया करता करे सोहोग न चले चलाया।

असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले तां के असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला एक मांसाहारी एक तरण खाए एक नाशति अमृत पाहे एक मिटिया मैं मिटिया खाहे एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार। जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए। पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम ते आई है। दूजी कार लग जन्म गवाई है वेणा में सब वेस पैजै खाई है। सच्चा शब्द सलाह सच समाई विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा साला है पत स्यों जाई है। सलोक महला पहला तुद पावै ता वावै गावै तुद पावै जल नावै जा तुद पावै ता करै बेपूता सिंगी नाद वजावै जा तुद पावै ता पड़ै कतेबा मुल्ला सेह कहावै जा तुद पावै ता होवै राजे रस कस बहुत कमावै जा तुद पावै तेग वगावै सिर मुंडी कट जावै जा तुद पावै जाए दसंतर सुन गल्लां कर आवै जा तुद पावै ना रचावै तुद पाणे तू पावै नानके कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावै। महला पहला

दुए भौकिया खादा हुए सुहा पी खाने स्यों दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी मीट पवार गया पी उठ रचियोन वाद सैवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावन होए महला दूजा से पूरे साहा जिनी पूरा पाया अठी वे परवाह रहन एक तैरंग दर्शन रूपया था विरले पाई है कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इना चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हों मैं जाई है लियन खरे परख दर भी नाई है सौदा एक तहट पूरे गुर पाई है श्लोक महला दूजा अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निध नाम एक पाले गुणी गहीर कर्मवंती साला हया नानक कर गुरपीर चौथे पैर सबाह कै सुरत्या उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाओ ओथे अमृत वंडी है करमी होए पसाओ कंचन काया कसी है वन्नी चढ़ै चढ़ाओ जे होवै नजर सराफ की बहुना पाई ताओ सत्ती पहरी सत भलिया सत्ती पहरी सत भला बहिया पढ़िया पास ओथे पापुन बिचारी है कूड़े कट्टे रास ओथे खोटे सकती है खरे कीचे सा बास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमै पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिन सरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे तरम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा पोजन पाओ सतगुर दस्या सच्चे ही पति आए सच विगस्या सच्चे कोट गिराए निज कर वस्या सतगुर तुठे नाओ प्रेम रहस्या सच्चे दै दी बाण कूण ना जाइए झूठो झूठ वखाण सो महल खुवाई है सच्चे सबरी सान ठाक ना पाइए ससुण बुझ वखाण महल बुलाइए श्लोक महला पहला पहरा अग्न हवै कर बादा भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा धरती हाग चलाई तारता राजी अंबर तोली पिछे टंग चढ़ाई एवड वदा मावा नाही सबसा नथ चलाई एता तान होवै मन अंदर करी पे आख कराई जेवड़ साहेब तेवड़ दाती दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिस उपर सच नाम वड्याई महला दूजा आख ने आख न रजिया सुन न रजे कन अखी देख न रजिया गुण गाह के कवन भुखिया भुख न उतरे गली भुख ना जाए नानक भुखा ता रजे जा गुण कै गुणी समाए पौड़ी विण सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है विण सच्चे कूड़ यार बन चलाई है विण सच्चे तन शार शार लाई है विण सच्चे सब भुख जे पै जै खाई है विण सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है कूड़ै लालच लग मैल खुवाई है सब जग ठग्यो ठग आई है जाई है तन मै तृष्णा अग शब्द बुझाई है श्लोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्कै कर्म ध्यान पत के साध खांदा लह दाना कै सिरदान महला पहला
सोने का बिरख पत परवाला, फुल जवेहर लाल, तित फल रतन लगे मुख पाखत, हृदय हृदय निहाल। नानक कर्म होवे मुख मस्तक, लिखिया होवे लेख, 68 तीर्थ गुर की चरणी, पूजे सदा वसेख। हंस हेत लोभ कोप, चारे नदियां अग, पवै दजै नानका, तरिय कर्मी लग पौड़ी। जीव दया मर मार न पछो ताई है, झूठा है संसार किन समझाई है, सच ना तरे प्यार तंदे ताई है। काल बुरा खै काल, सिर दुनियाई है, हुक्मी सरजनदार मारे दाई है, आपे दे प्यार मन वसाई है। मोहत ना चसा विलम, परिय पाई है, गुर प्रसादी भुज सच समाई है। श्लोक महला पहला। तुम्मी तुम्मा विस, आकत तूरा निम फल, मन मुख वसै तिस, जिस तू चेतना आवही। नानक कहिय किसो, हंडन करमा बाहरे महला पहला। मत पंखेरू किरत साथ, कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अकडाल, कब उच्ची परीत, नानक हुक्म चलाई है, साहिब लगी रीत पौड़ी। केते कह वखाण कह कह जावना, वेद कह वखियाण अंत ना पावना, पढ़िया नाही भेद बुझे पावना। खड़ दर्शन कह भेख, किसे सच समावना, सच्चा पुरख्या लख शब्द सुहावना। मन्ने नाम बिसंख, दरगे पावना, खालक कहो आदेश ढाडी गावना। नानक जुग जुग एक मन वसावना, श्लोक महला दूजा। मंत्री होए अठूं हिया, नांगी लगे जाए, अपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए। हुक्म पया तुर खसम का, अति हूं तका खाए, गुरमुख स्यो मनमुख अड़े, डुबे हक न आए। दुहा सिरिया आपे खसम, वेखे कर व्यो पाए, नानक ए वै जानिए, सब कित सहर जाए। महला दूजा। नानक परखे आप कहो, ता पारख जान, रोग दारू दोवे बुझै ता वैद सुजान, वाट ना करी मामला जाने मेहमान। मूल जान गल्ला करे, हान लाए हान, लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान। सर संदे आगास कहो, क्यों पहुंचे बाण, अगे यो आगम है वाहे दड़ जान पौड़ी। नारी पुरख प्यार प्रेम सिंगारिया, करण भगत दिन रात ना रहनी वारिया। महिला मंज निवास शब्द सवारिया, सच कहन अरदास से वेचारिया। सोहन खसमे पास हुक्म सिधारिया, सखी कहन अरदास मनो प्यारिया। बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया, शब्द सवारी आस अमृत पीविया। श्लोक महला पहला। मारू मिह ना त्रिपत्या, अगी लह ना भुख, राजा राज ना त्रिपत्या, सायर परे किसको, नानक सचे नाम की। केती पुछा पुछ महला दूजा, नेह फलंग तस जनमस, जावद ब्रह्म ना बिंदते, सागरंग संसारस गुर प्रसादी तरह के, कारण कारण समर्थ है, कहो नानक विचार, कारण करते वस है। जिन कल रखी तार पौड़ी, खसमै कै दरबार ढाडी वसया, सचा खसम कलाण कमल विगसया। खसमो पूरा पाए मनो रहस्या, दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसया, सच्चा सतगुर सेवनो सच्चा मार्ग दसया। सच्चा शब्द विचार काल विधंसया, ढाडी कथया काथो शब्द सवारया, नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारया। श्लोक महला पहला। खतयो जम्मे खते कार,
ਨਿਤ ਖਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਹੇ, ਧੋਤੇ ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸਭ ਧੋਵਣ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਬਖਸੀਐ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਹੀ ਪਾਹੇ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚੱਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੈ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ, ਪੌੜੀ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪੁਰਖਿਆ ਲੱਖ ਸਿਰਜ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਉੱਜੜ ਭੁੱਲੇ ਰਾਹ ਗੁਰ ਵੇਖਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹੋ ਸੱਚ ਸਮਾਲਿਆ, ਪਾਇਆ ਰਤਨ ਕਰਾਹੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੁਖੀਏ ਸੱਚ ਵਾਲਿਆ, ਨੇੜਰਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗ ਗਰਭ ਸੇ ਗਾਲਿਆ, ਨਾਵੋਂ ਪੁੱਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਬੇਤਾ ਲਿਆ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੈ ਪੈ ਮਰੈ ਭੀ ਪਉ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰੈ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਏ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਭੈਵਣ ਜੀਵੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੈਵਣ ਜੇ ਮਰੈ ਮੋਹੇ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਮਹੂ ਝੂਰੀ ਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਿਰ ਖੋਹਾਏ ਪੀਐ ਮਲਵਾਣੀ, ਜੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਹੀ, ਫੋਲ ਫਦੀਹਤ ਮੋਹ ਲੈਨ ਪੜਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਗਾਹੀ, ਭੇਡਾ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਖੋਹਾਏ।

मोए कथा उपाही 68 तीर्थ देन ना ढोई ब्राह्मण अन्न ना खाही सदा कुचील रह दिन राती मथे टिके नाही चुंडी पाए बहन नित मरण दर्दी बाण ना जाही लकी कासे हथी फुमण अगो पिछी जाही ना ओए जोगी ना ओए जंगम ना ओए काजी मुल्ला दैव गोए फिर विगुते फिटा वत्ता ऐ गला जिया मारजी वाले सोई अवरना कोई रख दानो तैस नानो वंजे पास पई सर खुथ पानी विचों रतन्यो पन्ने मेर की आमा दानी 68 तीर्थ देवी थापे पुरबी लगे बाणी नायन वाजा नाते पूजा नावनो सदा सुजानी मुया जीवदया गत होवे जां सिर पाईए पानी नानक सिर खुथे सैतानी एना गल ना पानी वुठे होए होए बिलावल जियां जुगत समाणी वुठे अनक मादक पाहा सबसे पर्दा होवे वुठे काओ चरै नित सुरही सातन दही विलोवे तित के होम जग सद पूजा पया कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वड़े आई नानक जे सिर खुथे नामन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्गी पाला के करे सूरज के ही रात चांदा नेरा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किश होए नानक ता पत जानी है जा पत रखे सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दीबान होर आवन जानिया सच जे मंगे दान से तुद जेहया सच तेरा फुरमान सब दे सोहया मन्या ज्ञान ध्यान तुदै ते पाया कर्म पवै निशान न चले चलाया तू सच्चा दातार नित देवै चढ़ै सवाया नानक मंगै दान जो तुद पाया श्लोक महला दूजा दीख्या आख बुझाया सिवती सच समेओ तिन कहो क्या उपदेसी है जिन गुरु नानक देओ महला पहला आप बुझाए सोई बूझै जिसे आप सुझाए ते सबके सूझै कह कह कथना माया लूझै हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने सर्ब विचार अखर नानक अखे हो आप लह प्रात होवै जिस दात पौड़ी हाँ टाडी वे कार कारे लाया राध है कै वार तुरों फुरमाया टाडी सच्चा महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन आया गुरमति खादा राज तिन सुख पाया टाडी करे पसाओ शब्द बजाया नानक सच सा लाहे पूरा पाया सुध रा गौड़ी गुआरे री महला पहला चौपदे दोपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद पौ मुच पारा वड्डा तोल मन मत हौली बोले बोल सिर तर चलिए सहिए पार नदरी करमी गुर बिचार पै बिन कोय ना लंघ सपार पै पौ राखिया पाए सवार रहाओ पै तन अगन पखे पै नाल पै पौ कड़िए शब्द सवार पै बिन काड़त कच्चन कच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजै चाओ सह सियाणप पवै ना ताओ नानक मनमुख बोलन वाओ अंधा अखर वाओ दवाओ गौड़ी महला पहला डर कर डर डर डर जाए
सो डर केहा जित डर डर पाए तुझ बिन दूजी नाहीं जाए जो कुछ वरतै सब तेरी रजाए डरिए जे डर होवै होर डर डर डरना मन का सोर रहाओ ना जियो मरे ना डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हित आसा असमान तिस विच भूख बहुत नैसान पौ खाना पीना आधार विण खादे मर होहे गवार

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किस कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामण कर मन ले सहा संयोग वियह वियोग सच संतत।

गुरमत दे भरोसा तेरा तन मह मैल नाही मन राता गुरबचनी सा शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया अनपै विसरे नाम समाया क्या डरी डर डरे समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सह सुभाए मिले साबास जाहे सवार सांझ ब्याल एतुत मनमुख बांधे काल अहनिस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रै गुण हितकार चारे वेद कथा आकार तीन अवस्था कह वखियान तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जा कह हृदय वसया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा महे निरास बुझाया दीना नाथ सर्व सुखदाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रहे सुखाली बाजी हो संसारो लब लोभ मुच कूड़ कमावे बहुत उठावे पहारो तू काया मैं रुल दी देखी ज्यों तारी ऊपर इशारो सुन सुन सिख हमारी सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े बहु नया वैवारी रहाओ हाँ तुझे आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करे चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रही है छुट्टड़ हुई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जाकछ लिया ता मन भला पाया हालत ना सोबा पलत ना टोई।

ताजी तुरकी सोई ना रूपा कपड़ केरे पारा किसी नाल न चले नानक चढ़ चढ़ पे गवारा। कूजा मेवा मैं सब किस चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दें दे नीम दिवालो सारी पस मंदिर की टेरी संचे संचना देई किस ही अंध जाने सब मेरी सोइन लंका सोइन माड़ी संपै किसे न केरी। सुन मूर्ख मान्या जाना होग तिसै का पाना रहाओ शव हमारा ठाकर पारा हम तिसके वन जारे जियो पिंड सब रात तिसै की मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किसे आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचिर मना आगे जम दल बिखम कना रहाओ उसार मडोली राखे द्वारा पीतर बैठी साधना अमृत खेल करे नित कामनो अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मडोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। हाट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी करे आवे, अगो देखे पिछों देखे, तुते कहां छुपावे। तट तीर्थाम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी तोलन लागा, कठी मैं मन जारा। जेता समुंद

जियाड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। गौड़ी बैरा गण महला पहला रहण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। नाम ना जान्या राम का मूड़े फिर पाछा पछताहे रे रहाओ अंता तानो तरनी तरे अंत ना चाहया जाए अंत को चाहन जो गए से आए अंत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सब को पागट होए कर्मा उपर निबड़े जे लूचे सब कोए नान करना जिन किया सोई सार करे हुक्म ना जापी खसम का किसे वडाई दे। गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो। मैं बनजार नराम की तेरा नाम वखर व्यापार जी रहाओ कोकल होवा अंब बसा सह शब्द विचार सह सुभाए मेरा सहो मिले दर्शन रूपिया पार। मछली होवा जल बसा जी जंत सबसार उरवार पार मेरा सहो बसे हो मिलोगी बहा पसार। नागन होवा तर वसा शब्द वसे पव जाए नानक सदा सोहागनी जन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्वी देव की महला पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद जय कर कीर्ति आखिए करते का होय बिचारो तित कर गावो सोहेला सिवरो सृजनहारो। तुम गावो मेरे नरपौ का सोहेला हो वारी जाओ जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालिया नो देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजनिया सीसड़िया जो हुआ सैब स्यो मेल। कार कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। राग गौड़ी गुआरे री महला तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुर मिले हर मेला होई आपे मेल मिला वै सोई मेरा प्रभु सब विद्या पे जाने हुक्मे मेले शब्द पछाणे। सतगुर कै भय प्रम पौ जाए पै राचे सच रंग समाए रहाओ। गुर मिले हर मन वसे सुभाए मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाए शब्द सलाह अंत ना पारा वार मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए मन निर्मल वसे सच सोए साच वसे साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार गुरते सा

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जीव वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन मुख अंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै से महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भोजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भगती आख वखाणी, आन दिन जपे हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, सतगुर मिलै वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करै आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही, जैसे धरती मध्य पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

बाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूर्ख हर हर जब पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तार पौजल तू तारी रहाओ सन्यासी विपूत लाए देह सवारी परतरे त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूर्ख हरियास तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरतन पावे सूद वैस पर किरत कमावे मैं मूर्ख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई गुरमुख नानक देवड़े आई मैं दले हर टिक टिकाई गौड़ी गुआरे री महला चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की भज मिल साधु संगत जन की तार पौजल अकथ कथा सुन हर की गोविंद सतसंगत में लाए हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ जो जन त्यावे हर हर नामा तिन दासन दास करो हमरा मां जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेण वडभागी पावे संत जना स्यों प्रीत बने आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी गुआरे री महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत भई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ते हर जन हर मिलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ जो मिल बछरे गऊ प्रीत लगावे कामन प्रीत जा पिर करे आवे हर जन प्रीत जा हर जस गावे सारंग प्रीत बसै जल तारा नारपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपै निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिलै गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरे री महला चौथा पीखक प्रीत पीख प्रपाए पूखे प्रीत होवै अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिलिया गाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारे सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिकसै देखै माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआरे री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम ते आया हर तनी।

जो हमरा मन चित है स्वामी साबे तुम्हार जानो मेरी आन दिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाता पंथ बताया हर मिलिया आए प्रमेरी आन दिन अंध पया वडभागी सब आस पुजी जन केरी जगनाथ जगदीशर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पै जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा एहो मनुमा खिन ना टिकै बहुरंगी दह दह दिस चल चल हांडे गुरपूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाओ हमरा मस्तक दा दगाना हम करज गुरु बहु सांडे पर उपकार पुन बहु किया पद उतर तार परांडे जिन कौ प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गांडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है त्यो मनमुख गर्भ गलाडे हम जानिया कछु न जाने आगे ज्यो हर राख है त्यो ठांडे हम भूल चूक गुर कृपा धारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मन साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पनवड्डा है कर डंडाओ तो पनवड्डा है रहाओ साक्त हरा साधना जानिया तनंतरा हूं मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुबे दुख पावे जमकाल सहै सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अबनासी पुरख पाया परमेश्वर बहु शुभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वडवड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है के साधना पावे तीठा हर दीन दयाला नगरो किया हर गुर शब्दी चख डीठा राम हर कीर्तन गुरले मीठा रहाओ हर अगमा गोचर पार ब्रह्म है मिल सतगुर लाग बसीठा जिन गुर भजन सुखा नहीं अरै तिन आगै अण परीठा मन मुख ही अरा अत कठोर है तने अंतरकार करीठा बिसियर कहो बहु दूध पी आई है बिख निकसै फूल फुलीठा हर प्रभ आन मिलावो गुर साधु कस गरड़ शब्द मुख लीठा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ श्री राम बेचिया पूरे गुर के आगे सतगुर दाता नाम दड़ाया मुख मस्तक पाग सुभागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागे हम मंतन देवो काट गुरु कहो मेरा परम्प गुर बचनी भागे अंधियारे दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञाना देरा बिनस बिनासियो कर वस्त लही मन जागे साकत बद्धक माया धारी तिन जम जोहन लागे उन सतगुर आगे सीसना बेचिया ओ आवे जाया भागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लजपात गुरु है सिर बेचो सतगुर आगे गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिलिया आप गवाया हम मैं रोग गया सुख पाया तन तन गुरु हर राया राम गुर कै बचन हर पाया रहाओ मेरा ही अरे प्रीत नाम राय की गुरमार्ग पंथ बताया मेरा जियो पिंड सब सतगुरे आगे जिन विछड़िया हर गल आया
ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਦੇਖਣ ਕਹੋ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਭਇਆ ਮਨ ਮੋਰੈ ਗੁਰੇ ਆਗੈ ਆ ਵਿਚਾਇਆ ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਕਰ ਦੁਸ਼ਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤ ਆਏ ਹਰ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮਤ ਬਾਜੈ ਸਬਦਾ ਨਾਹਦ ਗੁਰਮਤ ਮਨੁਆ ਗਾਵੈ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਰਹਾਓ ਹਮਰਾ ਠਾਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਹਮ ਮਲਮਲ ਧੋਵੈ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੇਵਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਨ ਰਸਕ ਰਸਕ ਹਰ ਰਸਿਆ

मिल पूर्व लिखे अड़े तुरकर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया, जियो मन मोर कोह के अड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत वुठड़ा मिलिया हर राया, जियो जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करीहा, जियो मिल संत जना रंग माने रलिया, जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया, जियो हर तुठ टोल टोल मिलिया, जियो मेरा मंत्र प्रेम लगा हर ढोले, जियो मैं मेले मित्र सतगुर वे चोले, जियो मन देवा संता मेरा प्रमेले, जियो हर विटड़ियो सदा कोले, जियो वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वस जियो, मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा, गुरपूरा वेख विगस जियो, हर नाम मिलिया सुहागणी मेरे गोविंदा, मन अनदिन अनदर हस जियो, हर पायड़ा वड़ भागी मेरे गोविंदा, नित लैलाहा मन हस जियो, हर आपो पाए हर आपे वेखे, हर आपे कर लाया जियो, एक खावे बख्स तोट ना आवे, एक ना फुका पाया जियो, एक राजे तख्त बह नित सुखिए, एक ना पिख मंगाया जियो, सब एको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो, हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा, गुरपूरा लख लखाही जियो, हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा, सब दाल दो दुख लह जाही जियो, हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा, वडभागी नाम समाही जियो, नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा, किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो, मेरा मन तन बहुत बैरागिया मेरे गोविंदा, हर बाजो तन कुम लैनी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो, मैं मिलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मंत्र भुख लगाइया जियो, हो रह ना सकौ बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरो हर लाइया जियो, हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो, मेरा मंत्र आसा पूरिया मेरे गोविंदा, हर मिलिया मन वधाइया जियो, वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया, हां तुद विटड़िया सदवारी जियो, मेरा मंत्र प्रेम प्रम का मेरे गोविंदा, हर पूंजी राख हमारी जियो, सतगुर विष्ट मेल मेरे गोविंदा, हर मेले कर रह बारी जियो, हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा, जन नानक शरण तुम्हारी जियो, गौड़ी माज महला चौथा, चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्यारिया, हर प्रभ मेरा चोजी जियो, हर आपे कानो पाईंदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब कट भोंगदा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो, हर सुजानना भुल मेरे गोविंदा, आपे सतगुर जोगी जियो, आपे जग तो पाईंदा मेरे गोविंदा, हर आप खेले बहुरंगी जियो, एक ना भोग पोगाईंदा मेरे गोविंदा, एक नगर

हर हर नाम जब जंतार्यो अग्न सागर गुर पार उतार्यो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भय जन्म जन्म के किलवख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे अब टूंडन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल पूर्ण होई सेव काल बंधन काट किए अपने दास। सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूरे ओ सब जाए। गुर पूरे सब भ्रम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे। जे तंदे मैं ओए लपटाए उनते दुगड़ दिड़ी उन माए। ओह बेला का चीत न आवे बिन सजाए ताहू लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे काम क्रोध लपटे वसने हे सिर ऊपर ठंड ओ धर्म राए। मीठी कर कर बिख्या खाए हों बंदा हों साधो बैर हमरी भूम कौन काले पैर। हों पंडित हों चतर सियाणा करने हरना बुझै बिगाना। अपनी गत में ते आपे जानै क्या को कह क्या आख बखानै। जित जित लावै ते तित लगना अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करना हार अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान कबू ना विसरै नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवां आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु सियाण पे अगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगह सोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का उला तुझे ना लागे ताता झोला रहाओ। जो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे। अग्न सीत का लास दुख नाम जपत मन होब सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जस आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना पुत्र कलत्र उर जो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। जो बिगारी कैसर दी जय दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। जो सुपने होए बैस्त राजा नेत्र पसारै तन निरार्थ काजा। जो राखा खेत ऊपर पराए खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै तिसके पल कछु ना पड़ै। जिसका राज तिसे का सुपना जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिनाहे आप

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो, चखत होए रह बिस्मादो, अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कत हूं जाइय, साध संगत वडभागी पाइय। आठ पहर जेहवे आराद, पार ब्रह्मो ठाकर आगाद, इहा उहा सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोडे, आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मदे बस्त्या पार, इस ही पीतर सुनियत साहो, कौन बापारी जा कहुआ विसाहो। नाम रतन को ब्योहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर।

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जा मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी, रैन दिनस रह करंगा। प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन। तृप्ता गावन हर कै दर्शन, हर संग्राते मंतन हरे। गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार। एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी। अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहू ते मुक्ते। सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस सब मैं सब ते रहते। पार ब्रह्म का हो ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखाना। आगाध बोध किस्मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय। तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल व्याधि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उठ तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज मैल सिंगार, पाई दूध व्याप्त अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त हे जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निकटना आवे माई, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठा साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे, सावत वस्तु अपनी लहर रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, गृह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे। उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना भाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, साह संग दुष्ट वस होते। कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। जा कै वस खान सुल्तान, जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोए। कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ। सब ते ऊंच जा का दरबार, सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जाकी शोभा कड़कड़ बनी। जिस सिमरत दुख डेरा टहै, जिस सिमरत जम किशु नाम कहै, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेट तहु मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोलै, अमृत बाणी गुरमुख बोलै। सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुर ते प्रभ जाते रहाओ। संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे। संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अमरी जिंद। कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नींदया, साध संग नानक नाम लया। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। साध संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुर पैर। अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ। सहज सूखया नंद निदान, राखण हार रख ले निदान,
दुख दर्द बिन से पै भरम आवन जान रखे कर करम पेखै बोलै सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद भयो प्रगास पूर रहे कै गुणतास कहत पवित्र सुनत पुनीत गुण गोविंद गावे नित नीत कहो नानक जां को हो कृपाल ते जन कीसा पूर्ण काल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा बंधन तोड़ बोलावे राम मन में लागे साहि ध्यान मिटै क्ले सुखी हो रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा ते संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल त्याग मिलावे सर्वदान गुरु ते पावे आप त्याग मिटाय आवन जाना साध कै संग पार ब्रह्म पिछाणा जानी ऊपर प्रभ दयाल जन की टेके गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्वदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म से लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया दिहारा नानका प्रभ अपरिया पारा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिस मन वसै तेरा जन सोए जां कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कश पौ ना ब्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है गुरपुरे ते ए मत पाई है रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगमा गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्वनिधान प्रभ की पूजा पाई है मान जाकी टहल न बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निधान हर लख स्वामी जी जन तेरी सरनाई नानक नाम मिले वड्याई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिवरो अनाथ को नाथ प्रवचित आए सब दुख जाए पैसा बिन सहर कह नाए बिन हर पाओ काहे का मानै हर बिसर तो काहे सुख जानै रहाओ जिन तारे बहुत तरन आगास जा की जोत जी प्रगास जा की बख्शना मेटै कोए सिमर सिमर प्रभ निरपा होए आठ पहर सिमरो प्रभ नाम अनक तीर्थ मजन इशनान पार ब्रह्म की सरनी पाहे कोट कलंक खिरमै।

उदरै अवतरै संसार, राम नाम जप एक ओंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाकै माथै इहो निधान, सोई पुरख जपै भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हौ तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारे री महला पंजवां, चौपदे दुपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जो प्रायो सोई अपना, जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना। कहो गुसाई मिलिय के है, जो बिबर्जित तिस्यो ने है। रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ा पूठा बुनना। दुहा सरिया का खसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवां, कल युग में मिले।

गुणगाम। बुरा भला कोई ना कही जय, छोड़ मन हर चरण कही जय। कहो नानक गुरमंत्र चितार, सुख पावै साचा दरबार। गौड़ी महला पंजवा, जा का मीत सजन है समिया। तिस जन कहो कहो का की कमिया, जा की प्रीत गोबिंद स्यों लागी। दुख दर्द प्रमता का भागी रहाओ, जा कहो रस हर रस है आयो। सो अनरस नाही लपटायो, जा का कहया दरगह चल। सो किसको नजर लाया वै तल, जा का सब किता का होए। नानक ता कहो सदा सुख होए। गौड़ी महला पंजवा, जा कै दुख।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक से ही जन

साधु संग करो सबको ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवां जल थल महियल पूर्ण हरमीत प्रांबिन से गाए गुणीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ जाकै सिमरन जमने डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभु दय निवास।

हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिक संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते। मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम नोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवां।

निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा। नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव, रहाओ शीतलाते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, तान्यो मस्तक।

ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ। आगे आप एहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जाप, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान। आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा, सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल। राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा, धोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त ना पाईऐ, मुक्त पदार्थ नाम त्याईऐ रहाओ। पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी काड लेवै हथ दाना। वेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जिया कुहत ना संगै प्राणी। कहो नानक जिस कृपा तारै, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचारै। गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुर तुमरे काज सुवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जलै, हर संग राते माया नहीं छलै। हर संग राते नहीं डूबे जलाओ, हर संग राते सुफल फलाओ। सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ। हर संग राते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साध का मंता। हर संग राते जमकी नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस। हर संग राते दुख ना लागे, हर संग राता अंदन जागे। हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते परम पौ नसै। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए। कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको परम मेरा बिसरत नाही। गौड़ी महला पंजवा, उद्यम करत शीतल मन भए, मार्ग चलत सगल दो गए। नाम जपत मन पय आनंद, रस गाए गुण परमानंद। खेम भया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ। नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस। गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया। जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लगदा सह पाए। आप गया ता आपे पए, कृपा निदान की सरनी पए। जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया। अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन। गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान, लाख अरब खरब दीनो दान। जामन वस्यो हर को नाम, सगल पवित गुण गाय गोपाल। पाप मिटाए साधु शरण दयाल रहाओ। बहुत उर्द तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे। हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने। जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ स्यो मन माने।
ਆਗਾਧ ਬੋਧ ਹਰ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਦੈ ਬਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੂਰਾ, ਤਿਸੈ ਅਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਆਨ ਦਿਨ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰਨਾਮ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਪਏ ਸਗਲ ਕਾਮ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਖ ਗਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹਾਂ ਪੈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪੈ ਜਰਖਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੈ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਉਬਰੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਪੂਰਨ ਸਜ ਸੋਏ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਮਨ ਬਸਿਆ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖਲਾਥੇ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰਨਾਈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੋ ਪਦੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਮ ਕੋਬਲ

नानक मांगत नाम आधारे। हरा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिर तसाई। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानक, सा संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। को संत मिलै वड़ भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगै। मन की मत मोहे सगल ते आगी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै। आन दिन फिराओ तिस पिछै वैरागी, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे। पेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग्राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा,

करो दास दासन की अनक पांत करो नेहोरा तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद किन विद मिलै गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई एक बस बिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई अन क्यों पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन विद मिले गुसाई सहज पाया प्रभ खिन मैं नाठा मिल ज्योति जो समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठ लै सतगुर मजै बतायो रहाओ जात का देखो ताता तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो कै पै करो अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो लयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो नाव निध नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठ जायो एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्त तत् मिलायो गौड़ी महला पंजवा औध कटै दिन सुरै नारे मन गुरमल का सवारे रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला इहां खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बिधाते सरदा मन की पूरे नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण।

शरण परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सो लो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रमतो प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्म, जा कै सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जौ होए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुखार के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाइए। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाइए। मेरे मन नाम लय जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइए। सेव स्वामी सतगुर दाता, मन वंचित फल आइए। नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सदगुर अपने की, गुरते पाइये पाले। गुर कृपाल कृपा प्रभतारी, बिनसे सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ, कोट जोरे।

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो सहज केलो अनद खेलो रहे फेर पय मेल। नानक गुरशब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर नाम ले हो मीता ले हो आगे बिखम पंथ पयान रहाओ। सेवत सेवत सदा सेव तेरा संग बस्त है काल, कर सेवा तू साध की हो काटिए जमजाल। होम जग तीर्थ किए बिचह मैं बदे बेकार, नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार। शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे। जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार, नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार। राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मृत, दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ। जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ तौ लो दुखन परे, जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया तौ आनंद सहजे। जेती सियानप कर्म हों किए तेते बंद परे, जाओ साधु कर मस्तक धरयो तब हम मुक्त पए। जाओ लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो तब हम सहज सोए।

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांझ। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ ना आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराध, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाद। पय कृपाल गुसाइया।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जाना, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस निंदा दो त्याग, खोजे पद निर्वाणा, जन नानक हो खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनस एक अस्थिर मन, अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथिया, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनिस मगन रह माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद्या बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग, देखता से उठतावै। भुगत मुगत का कारण स्वामी, मूड ताहे बिसरावै, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा, साधो एहो मन गहयो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई, रतन ज्ञान सब को हिरलीना, तासों कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तौ सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अब महान मोह माया फोन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै। वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै। माया मोह महासंकट बानो ता सो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु ता सो नेहु ना लावै। नानक मुक्ताहे तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा। अहन से औद कटै नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै। और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ता को नाम ही है मो धर रे। पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कशु उपाओ मूत का कर रे। नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी। एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार। त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया। लाल पय सूहा रंग माया नदर पई बिगठाक रहाया। उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवै मन हास्यों लागया। रस संग्रह बिख पर हर त्यागया। पाए बसे जमका पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा। चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत। किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हरनाए। सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना। लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पुलो नह परम पुलाना। कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान। गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। उस्त कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुर ते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए। रहाओ मन भूलो बोचते विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम बिरुदो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पै विकार। हरक सोक उबे दरबार, सुख सहजे जपरदै मुरार, नगर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामै सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावै, साचे सूचे मैल न पावै, नानक हर गुण गावै। गौड़ी गुआरे री महला पहला, हौं मैं करत्यां ने सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावै दोए, सो कमावै तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगै नाम बिसारी। रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत दुख

ता हर नाग चले नखो विधासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दै संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन में जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावे परम भुलानिया एक तिल भूले बहुर पछतानिया कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राख कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिलै गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाट पटंबर पहरा हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरा

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहन फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दे वाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हो मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्याह त्या गै कवरे, पाए मिलाए सच सच है सच रे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिलै मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जा रै, सो उबरै गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचरिया रमीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन अगर

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावै नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोएथ सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाह वाह जे वाट दिखावै, तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावै, तिसको वाह वाह जे मेल मिलावै। वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए

अब सुल्तान खान बादशाह नैरना नामो पुले जमका दुख सहना मैं तर नाम ज्यो रखो रहना चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम सह मरे संचय माया दाम मैं तन दीजे हरि अमृत नाम रैयत महर मुकदम सिकदार निश्चल कोय ना दिसे संसार अफर्यो काल कूड सिर मार निश्चल एक सच्चा सज सोई जिनकर साजी तने सब गोई ओ गुरमुख जापै ता पत होई काजी शेख पेख फकीरा वड्डे कहावै हो मैं तन पीरा काल ना छोड़ै बिन सतगुर की तीरा काल जाल जिहवा यार नैनी कानी काल सुनै बिख बैनी बिन शब्द मूठे दिन रहनी हृदय साच वसै हर नाए काल न जोहे सकै गुण गाए नानक गुरमुख शब्द समाए गौड़ी महला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई चाले गुरमुख हुक्म रजाई रह अतीत सच्चे सरनाई सच कर बैसै काल न जो है मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ अकथ कथ रही है निज कर बैस सहज कर लही है हर रस माते सुख कही है गुरमत चालो निचल नहीं डोलै गुरमत साच सहज हर बोलै पीवै अमृत तत् विरोलै सतगुर दीखिया दीख्या लीनी मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सच ज्योतिया पार जय देखो तह एक ओंकार रह निरालम एका सच करनी परम पद पाया सेवा गुरचरणी मन ते मन मानिया चुकी अहम ब्रह्मणी इन विद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया सासन दुखे परम चुकाया जिनकै मन वसिया सच सोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच नाम मलख होई गौड़ी महला पहला राम नाम चित जापै राम नाम

आए गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच सोई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन पर बोधो बूझो सोई, लोग समझावो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई। मनमुख डंफ बहुत चतराई, जो किश कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बग ज्यो लाए बह नित्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुरु सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई। गुरमुख जात पात नामे वड़ियाई, सायर की पुत्री बिदार गवाई, नानक बिन नामे झूठी चतराई, गौड़ी महला तीजा। इस जोका धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सो जी पाई, एथे अगे हर नाम सखाई। राम पढ़ो मन करो बिचार, गुर प्रसादी मैं लियो तार, रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर कै शब्द सच लिवलाए। हाँ मैं मैला एहो संसारा, नित तीर्थ नावै ना जाए हंकारा, बिन गुर भेटे जम करे खुवारा, सोजन साचा जे हों मैं मारै, गुर कै शब्द पंच संघारै, आप तरै सगले कुल तारै। माया मोहे नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख लिबत रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे हंकारी। आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतराई, माया मोहे अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, गृही अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवै सेवड़ भागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मो प्यासा, त्रैगुण भर में नाही निज कर वासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, आंदन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रैगुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद वखाणे सिर मारे जमकाला। तत ना चीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम बिसारे

सद ही निर्मल सही सुमावै, हर कथा सुने से तनवंत दिसै, जुग माही तिनको सब निवै, अंदन पूज कराही। सहजे गुण रवै साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हमें मार ब्रह्म मिलाया। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाने, अंतर तामस आप ना पछाने, तां प्रभ पाए गुर शब्द बखाने। गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मन मुख खादे दूजे पाए रहाओ। गुरमुख प्राणी अपराधी सी दे, गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे। मेरा प्रपाया गुर कै शब्द सी दे, सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए। मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे सह सुभाए। बिन गुर साचे परम पलाए, मन मुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए। जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हम मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई। सतगुर सेवै से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता। इन विद कुशल तेरा मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विचों आप गवाए। अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुर ते कवन कवन नासी दो मेरे भाई, भगती सीधे दर शोभा पाई, नानक राम नाम वड्याई। गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण वखाणे भरम ना जाए, बंधन ना टूटे मुक्त ना पाए। मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी परम गवाए, सहित उपजय हर लिवलाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम नाचे तय उपावन हारा, मर जमै फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम ना जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई। बिखका माता बिख महे समाई, माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नदर करे सो परम गत पाए। अंतर साच बाहर साच वरताए, साच ना छपै जे को रखै छपाए, ज्ञानी बूजै सह सुभाए। गुरमुख सांत रहया लिवलाए, हम मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए। सतगुर दाता शब्द सुनाए, तावत राखै ठाक रहाए, पूरे गुर ते सोजी पाए। आपे करता सिरिट सिर जन गोई, तस्बें दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूजै कोई। गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावै, नामो सेवे नाम सही सुमावै, अमृत नाम रसना नित गावै, जिसनों कृपा करे सो हर रस पावै। आनदन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ। हृदय सुख भया प्रगास, गुरमुख गावै सच गुणतास, दासन दास नित होवै दास, गृह कुटम मैं सदा उदास। जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावै सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिलै प्रभ सोई। मोह कुटम्ब स्यो प्रीत ना होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन बेदया स्थिर होए, हुक्म पछाणे बूझै सच सोए। तू करता मैं अवर ना कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करै गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग मै लोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसै अंदर लिवलागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वडभागी। हमै ममता दुरमत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास, जब हृदय रव्या चरण निवास।
ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸਾਜ ਸਮਾਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਵਾਰਿਆ ਪੈਸੈ ਸੁਭਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਰਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਜਾਏ ਅਭਿਮਾਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਰਹਾਉ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਾਉ ਖਾਏ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲਾ ਸਭ ਤੈਰਿਆ ਸਮਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੋ ਦਾਸ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਇਨ ਵਿਦ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤ੍ਰਿਗ ਬਹੁ ਜੀਵਨ ਜਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ, ਤਿਨ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਟੰਬ ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੋਈ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਮ ਗਤ ਪਤ ਪਾਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਦੁਖ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਮ ਕਉ ਸਰੀਰ ਸੁਧ ਭਈ, ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਅਗਨ ਬੁਝਈ, ਬਿਨ ਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਖਿਮਾ ਗੈ ਲਈ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ

में लाए। मन करहला तू मीत मेरा, पाखंड लोभत जाए, पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए। मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लै जाए। मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया हर आप लया गल लाए। मन करहला गुर मन्या गुरमकार कुमाए, गुर आगै कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए। गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया, विचार देख समाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल। मन करहला गुर गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चलै तेरे नाल। मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल, आप छडाए छुट्टिया सतगुर चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुर नानक नाम विखालिया हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले भ्रम पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरखिया काल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी गुआरे री महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कटकट जीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ, जब किस को एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन चुकाई तां ते इस संग नहीं बैराई, जब इन अपनी अपनी तारी तब इस को है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता तब इसनो नाही किस्ताता, जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवै जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर्मा ने पेदा तब ते दुख डंड अरखेदा। जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सबके सूझिया, जब एहो तावै माया अर्थी न तृप्तावै न तसलाथी। जब इसते एहो यो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार बबेक है। दूर ना नेरे सब कै संगा सा सालाहनो नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा गुरसेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा। तिसके हृदय रव्या सोए मन तन सीतन निचल होए, ऐसा कीर्तन कर मैं मेरे इहा उहा जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए तावत मनुआ आवै ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे जा जपत हम मैं पागे। जास जपत वस्या वै पंचा जा

जास जबत मुश्किल कछु ना बने, जास जब सुन अनहत न, जास जब ते निर्मल सोए, जास जबत कमल सीधा होए, गुर सुख दृढ़ सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर धार है, पंच जना स्यो संग निवार, दस इंद्री कर रखे वास, ताके आत्मा होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए, जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ, साजन दुष्ट जाके एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान है,

जपना। सहजे भोजन सहजे भाओ, सहजे मिट्यो सगल दोराओ। सहजे होवा साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्म निसंग। सहजे गृह में सहजो दासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जाके सहज मन भया आनंद, ताको भेटिया परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मैं आत्म रसिया, ताके संग अबनासी बसिया। सहजे आसन आसर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया। सहजे रोण चुनकार सुहाया, ताके कार पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको परयो कर्मा, सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा। जाके सहज पया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बान। गौड़ी महला पंजवा, प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया। पुत्र कलात्र कुटम संग जुरिया। भोजन अनक प्रकार बहु कपरे, सर पर गमन करेंगे बपरे। कवन स्थान जो कबो न टरे, कवन शब्द जे दुर मत हरे। रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना। शिवपुरी गा होएगा काला, त्रैगुण माया बिरस बिताला। गिर तर तरण गगन यार तारे, रव सस पवन पावक नीरारे। दिन सरैन बरत यार भेदा, सास्त सिमरत बिनसै गे बेदा। तीर्थ देव देहोरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती। धोती डंडौत प्रसादन भोगा, गमन करै गो सगलो लोगा। जात वर्ण तोर कर हिंदू, पस पंखी अनक जोन जिंदू। सगल पसार दिसै पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा। सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, सदा आनंद निहचर सजथाना। तहां संगत साध गुण रसै, अनपौ नगर तहां सदवसै। तह पौ परमा सोग ना चिंता, आवण जावण मृत ना होता। तै सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे। पार ब्रह्म का अंत ना पार, कौन करै ता का विचार। कहो नानक जिस कृपा करै, निहचल थान साध संग तरै। गौड़ी महला पंजवा, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा। जो इस मारे तसै वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोय जो दुबदा मार गवावै, इसे मार राजो कमावै। रहाओ जो इस मारे तिसको पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै, जो इस मारे सो दरगै सजै। जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता। जो इस मारे सोई जदी, जो इस मारे तिस होवै गति। जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निहचल तनी। जो इस मारे सो वड भागा।

जो इस मारे सो वंदन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ही सुग्यानी, जो इस मारे सो सही ध्यानी, इस मारी बिन थाए ना पर कोट कर्म जाप तप कर, इस मारी बिन जन्म ना मिट, इस मारी बिन जमते नहीं छुट, इस मारी बिन ज्ञान ना होई, इस मारी बिन जूठन धोई, इस मारी बिन सब किश मैला, इस मारी बिन सब किश जवला, जा कौ पए किरपाल किरपा निध, तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध, गुर दुबदा जा की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी, गौड़ी महा।

गौड़ी महला पंजवां गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुरमू गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे नाओ गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ राओ गुर कै बचन सुन रसन मखाणी गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गुर कै बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर कै बचन कीनो राज जोग गुर कै संग तरिया सब लोग गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर कै बचन पाया नाउ निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा तिसकी कटिया जम की फासा गुर कै बचन जागया मेरा कर्म नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवां तिस गुर कौ सिमरौ सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास रहाओ गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा गुर की रेण नित मज्जन करो जन्म जन्म की हम मैं मलहराओ तिस गुर कौ चूला वो पाखा महायगन ते हाथ दे रखा तिस गुर कै गृह ढोवो पानी जिस गुर ते अकल गत जानी तिस गुर कै गृह

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, ज्यो कूकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पिर क्यों सुख पाई है। गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह शरीर कूड़क सत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित उपजै, बिन भगति मैल न जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो। गुर कै पाए प्यारे, रहन सुख सुती जियो। अंतर उर तारे अंतर उर तारे, मिलिए प्यारे आनदन दुख निवारे। अंतर महल प्रदावे कामन गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सोहागण गुर कहे त्या पारे।

राम नाम वा पारा गम्या पारा गुरमती तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे, हरे आप सवारे आपे भक्ति लाए, आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

शंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आरा दी है जम पंथ विखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है कल मलै देता शुद्ध करता दिन सरहण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मनिया चिंदिया पाईऐ तम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुणयानक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घट घट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम्य पारो सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन कौ एक सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया तारे सब किस काल कंटक लोह मोह नासै जी जा कै प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मन उदम करेहा मनाए लै हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत सखी वस आया पर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करै तिस जंत सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाई है कल कलेस मिटै भ्रमनास है मन चिन्हया फल पाई है पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई भ्रम मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड भागी माए सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे मेरा मंतन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह सुवामी प्रगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बाम नखरी महला पंजवां सलोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंधप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद्ध गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर
गुरुदेव नानक हर नमस्कार। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग, नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं। आपै सुनो आपै सुख आसनो, आपै सुनो तो आप ही जासनो। आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो। आपै सूखम आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ सलोक निरंकार आकार आप, निर्गुण सर्ग

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तांते उजे रुच या मनुआ तन नहीं बांछै सुरग ना आछै अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भगत ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बात अनक जुगत शास्त्र कर पात ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कहत सुनत का जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट में बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या युग में एक कवाया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत्युत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एउ जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ्याप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो सो पायो जो आप दिवायो उवा का अंत न जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिखसोर नानक तेह सरनी परो बिनस जाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तऊ एऊ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग प्रम के मोहे ने बुझै सो प्रभ सधू संग लेखे गणतना छूटी है काची पीतना शुद्ध।

गंगा ग्रास काल ते जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्म मर आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पाए नानक ने छपया सलोक चित चित वो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिग सात प्रगट पाए आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिनसो सबदुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेने तरा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दा दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार स्यान बहु चतराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

पौड़ी जज्जा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नल नी परमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकर तिल नहीं मानी जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिरता सा संग जे हो मैं मारी नानकता को मिले मुरारी श्लोक चालांगे उठ नाम जप निस्बा सिर आराध कारा तुझे न व्यापई नानक मिटै उपाद पौड़ी चज्जा चूर्ण मिटै तुम्हारो राम नाम से कर व्यवहारो चूरत चूरत साक्त मुआ जा कर दे होत पहो बिया चरक संभल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ चरै काम क्रोध दृष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई सलोक यतन करो तुम अनक बिद रह ना पावो मीत जीवत रहो हर हर भजो नानक नाम प्रीत पवड़ी नया ज्ञानो दृढ़ सही बिनस जाय ए हेत गणती गणो न गण सको उड़सदारे केत न्यो पेखो सो बिनसतो कास्यो करिय संग ज्ञानो या बिद सही चित झूठो माया रंग ज्ञानत सोई संत सोए भ्रमते की चित भिन्न अंधकूबते देख डो जे होवो सो प्रसन्न न्या कह सम्राते कारण करण योग नानक ते उसत करो न्याहू कियो संजोग श्लोक टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाए नानक मनो न बिसरै गुणित गोविंद राय पौड़ी टहल

जा कौ साध कृपाल साधु संगतौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवन बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बिनासे कदके। सलोक ठाक न होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन पौड़ी ठठा।

दिन दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं कहू कौ मीता, माया मोह बंद प्रभ कीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, सलोक धर जिया रे एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मने प्रगास, तन साचा तेउ सच साहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, सलोक नानक नाम नाम जप जपया, यंत्र बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहद तूरे, सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी।

पतत पावन अग महाराया होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु पर पज त्रोह मोह मिट नाई जा कौ राखो आप गुसाई पात साहो छत्र सिर सो नानक दूसरे अवर ना को सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतेह पई मन जीत नानक गुरते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिर तू आया दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया फिरया ओसर चरै नहाथा नाम जपो तो कटिया फासा फिर आमन जान ना होई एक एक जपो जप सोई करो किरपा प्रभ करने हारे मिल रहो नानक बेचारे सलोक बिना सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल सुख संपै बहु भोग रस ना।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

पौड़ी। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जां कै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे हैपी हो वनहार, हे संतें कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए। सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। एहो श्लोक आद अंत पढ़ना। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै, अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरौ जास विषम पर एकै नाम जपत अगणत अनेकै, वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक आखर, किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै, कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ, प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै, प्रभ कै सिमरन भव ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप ता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला,
से सिमरै जने आप सिमराए, नानक तां कै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद महे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंत, प्रभ को सिमरै से पतवंत। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहि समानी। प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महापयान दूत जम दल, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल हो वै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंद न परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत अगावै। जेह मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही। अनक बिगन जाय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबो न तोवै, हर का नाम कोट पाप होवै।
ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध कै संग। जे मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहां।

जहां त्रिखा मन तुझे आकर्ष है, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भक्त जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन के हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पितर थीवै। अग्न माहे होमत प्राण, कनक असव है वर भूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी होमे मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिखिया उटरै। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही उपयाल, मोहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जमडानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए मैं शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल श्रेष्ठ साजना।
सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा।

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगे मान तिसे बिसारे मुगदया जान। सदा सदा एहो कूल नहार नानक राख नहारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचै साध छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै। चंदन ले प्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कू मैं पतत बिकराल नानक काढ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया शब्स नाहे कश करै छपाया। बाहर ज्ञान त्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन स्वा गल पाथर कैसे तरै अथा। जा कै अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सहि समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लेहो ओर निभावै। कहां बुजारत बूजै डोरा निस्कैयै तो समझै भोरा। कहां बिसन पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहां उस गवन। करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाई सुआवै ना चीत जो बैराई ता सो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत काल नया वै मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महा लोभ त्रोह। याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए। नानक कहू ना सी जई बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे। एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा कहो कहां करे। जिस ठाकर स्यो नाही चारा ता कहो की जय सद नमस्कारा। जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साहो अपनी देरास खात पीत बरते अनद उलास। अपनी अमान कश बाहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्त तिस आगे रखे प्रभ की आज्ञा मन माथे। उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल। अनक पांत माया के हेत सर पर होवत जानिया नेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओ बिन सहो मन पछतावे। जो दिसे सो चल नहार लपट रहे होते आंदे अंधार। बटाऊ स्यो जो लावे नेह ता को हाथ ना आवे के हे। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राजोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ हस्ती असो बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता।
मिथ्या त्रोह मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जब जब जीव हर के चरण। मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौहरै। मिथ्या नेत्र पेखत परत्रे रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कौ तावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पै, सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी सागत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम। तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ। रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्म मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पहने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा। उपाव सियान पो सगलते रहत, सब कह जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया सुमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख

बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जे प्रसाद शति अमृत खाहे, तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिस कौ सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसै त्याग कत अवर लोबावे। जे प्रसाद सुख से सुई जै, मन आठ पहर ताका जस गावी जै। जे प्रसाद तुझ सब को मन, मुखता को जस रसन बखाना। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगे मान पावे, नानक पासे ती कर जावे। जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको ना पहुचे, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ता की भगत करे है। जे प्रसाद या पूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभु को साह साह चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरौ सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह है जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेख है बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत साध संग मर सगली खोत साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुगयान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग नकत हूं तावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग ना बींगा पैर साध कै संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग ना ही हवताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बसता गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थानी उच्चै साधु कै संग मैल पहुँचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो तन पावै जिस तनते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलुख तहरै साध कै संग नरक प्रहरै
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगहेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का उसका आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक। और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान।
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸੋ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰਤਰੇ ਰੂਪ ਨਾ

पसरियो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक।

नानक करते का अंत ना पावै। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब कौ हिरै, कई कोट पर दुख ना करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मै चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास, कई कोट मांग ऐसा संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट की

संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाप की ईंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खे

ਸਭ ਕੀ ਤਿਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਵਾ ਨਾ ਹੋਗ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੱਚ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾਰੇਖ ਨਾਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਬਨਾਸੀ ਭ੍ਰਮਣ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨਵ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਓ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦਜਾਂ ਕੈ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਭਰੋਈ ਆਪਣੈ ਸੂਤ, ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ, ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਭਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਪੇ ਕਰੈ ਇਕ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਬਿਦਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ, ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਨਾਨਾ ਬਿਦਕਰ ਬੰਤ ਬਨਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ, ਸਭ ਘੜ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੁਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ, ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਨ ਸ੍ਰਵਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨ ਗਤ ਪਾਏ, ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ, ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇ ਸਮਾਣੀ, ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ, ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ, ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ, ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇਜਨ ਜਾਂ ਕਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ, ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਅਵਰਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸੁਆਦ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ, ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕੱਟ ਨਹਾਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ,
जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत अवनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जन मानिया, करन करावन तिन मूल पछानिया, जा कर दे विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भय ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहे सुमाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पेना कहना जाई, बूझे बूझन हर बबेक, नारायण मिले नानकेक। ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर का सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कह रंग, सेवक को प्रभ पालनहारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ धार है, नानक सो सेवक सास सास सुमार है। अपने जन का पर्दा ढक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की अपने सेवक की आपत रख है, ताकि गतमित कोई ना लख है। प्रभ के सेवकों को न पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। नीकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सासना काटते आप, ताको राख्त देकर हाथ। मानस जतन करत बहु भांत, तिसके करतब बिरथे जात। मारे ना राख है अवर ना कोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मन तंत्र पिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवर ना ही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जिह बादन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह सुआए। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखाना, तिसका गुण कह एक न जाना। आठ पहर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर सियाणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वड पागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार है।
गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कहो कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए निकामी, तिस्ता होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुर वडभागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जां का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जेहबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सदबरिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनास, जा कै मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग ना लेप, मन में राखै हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तै ते नासे, तपत माए ठंड वरताई, अंध भया दुख नाटे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाव चूका निरपा होए बसे, सगल ब्याद मन देख है नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गमन, सुन नानक हर हर जस रवन, निर्गुण आप सरगुण पीओ ही, कलातार जिन सगली मोही, अपने चरत प्रव्या बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ ना चाले बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक हो तन सार, अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर्यो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद मैं उरतारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ, एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन को चार कुंट उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोभा को करह पली करनी, सा सोभा पज हर की सरनी, अनक उपावी रोग ना जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कै नाए, दै दिस्तावत आवै ठाए, ता कौ बिघन न लागै कोए, जा कर दै बसै हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
पौ बिनसै पूर्ण होए आस, भगत पाया तुम परगास। तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा। आवा गमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरदेव। इउ रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अन क्यों पाप ना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए। संग ना चालस तेरा तना, तू क्या लपटावै मूर्ख मना। सुत मीत कुटंब अर बंता, इनते कहो तुम कमन सनाथा। राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कमन छुटकार। असहस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम बिसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। सार भूत सत हर को नाओ, सहे सुबाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिनस जाए हम मैं बिख फैल। होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावै सज तना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार। सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख। एको जप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रव्याप। अनक विस्थार एक ते पै, एक आराध प्राश्त गए। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जांजा चै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखिया से जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनद निलविलाग। वडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच्छ पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै।
ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦ ਨਾਮ, ਬੂਡ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ।

दयालो भगत वचन सदा कृपालो अनाथ नाथ गोबिंद गोपालो सर्व कटा करत प्रतपालो आद पुरख कारण करतार पवित जना के प्राण आधार जो जो जपै सो है पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्र

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार हो कश ना दृटेता पापुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक सह व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हारना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलते आप कर नहार नानक ठाकर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। अपने आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तै किसे भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करण हार नानक करते का नाह सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन। जब अपने आप उरतार है तो सगन अब सगन कहां विचार है। जह अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप। जय अशाल आशेदा भेद समाया ऊहा किसै व्याप्त माया। आपस कौ आपया देश तेह गुण का नाही प्रवेश। जय कै एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप पतियारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस कौ आपै पहुचा। जह आप रचे उपर पंच आकार तेह गुण मैं कीनो बिस्तार। पाप पुनते पई कहावत कौ नरक कौ सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल हौ मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान। आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक। जह अवगत

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो। अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनयाई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमर गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार।

राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ता की आस कल्याण सुख जाते सब कश होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए वेद पुराण सिमरत सुने बहुविध करो विचार पत उदाहरण पैहरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता पुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मन तन बसै तज काम क्रो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेश, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक।

संत निर्मल पए जन्मन मसिया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग परम तौ घणौ सदा संगार मीच हरख सोग सहसा संसार हाँ हाँ करत बिहाए जिन किए तिस न जाननी चितवै अनके उपाए आद ब्याद उपाद रस कब न टूटै ताप पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बुझै प्रताप मोह परम बुढ़त कणो महानरक मैं वास कर कृपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार सर्व खेम कल्याण निध राम नाम जप सार नरक निवारे दुख हरे टूटे अनक कलेस मीच हुटे जमते छुटे हर कीर्तन परवेस पाओ बिनसे अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दर्द अपवित्रता नासे नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो पर पंच कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै न बुझिए न कछ करत विचार स्वाद मोह रस भेद्यो अज्ञान रच्यो संसार जन्म

लोग खटशास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खटशास्त्र कह सिमरत कथ अनेक उत्तम उच्चो पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यो बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान परम बिनसेओ पाई शरण दयाल चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिराए सात संग लिव लाए खाट खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए सलोक संत मंडल हर जस कथ बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक शिष्यो लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मैं पाई है अंत ना पारा वार आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय दुख हरे पव जल तरै मन चंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहारण हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाइय तजिय अवर जंजाल जम कंकर जोहे न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच बसे ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिय नानक नाम हर रंग सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार पौड़ी नौमी नवे छदर अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारतरे रमै बकै साध निंद कर न सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कै ताई अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो जत देखौ तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन संतोख नाम जप लीने करनी सुनिया जस गोपाल नैनी पेखत साध दयाल रसना गुण गावै बेअंत मन मै चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाई नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है सलोक एको एक बखानी है बिरला जाने स्वाद गुण गोबिंद न जानिए नानक सब बिस्माद पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इनविद वर्त संपूर्ण भया तावत मन राखै कठाए मन तन सुध जपत हर नाए समय पूर रहे पार ब्रह्म नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म सलोक दुर्मत हरि सेवा करी पेटे साध कृपाल नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान हर की भगत करो तजमान हरे अमृत पान करो साध संग मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब को संतोख है पंच पूव आत्मा हर नाम रस पुख है गुर पूरे ते एह निहच उपाई है नानक राम रमत फिर जो न आई है सलोक
तीन गुणा मैं व्यापिया पूर्ण होत न काम पत्तो धारण मन बसै नानक छूटै नाम पौड़ी त्रौत सी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन ना मन मैं आयो सुख सागर प्रभ निमख न गायो हर शोका दे कर बाध्यो दीर्घ रोग माया आसा देओ दिने बेकार करत श्रम पायो नैनी नींद सुपन बरड़ायो हर बिसरत होवत एह हाल शरण नानक प्रभ पुरख दयाल सलोक चार कुंट चौदह पवन सगल व्याप्त राम नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रभ एक धरने आकाश समय प्रपेख जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तै बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान सलोक आत्म जीता गुरमति गुण गाए गोबिंद संत प्रसादी भै मिटे नानक बिनसी चिंद पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे संतोख दिया गुरुदेव मन तन शीतल शांत सहज लागा प्रभ की सेव टूटे।

मंत्र बताय हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानी है। दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया। सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया। जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया। सच गुरमुख जिनी सलाहया तिन्ना भुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोज इंदिया।

सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लय जिस लाए नानक दर्शन जिन्ना विखा लेन तिन्ना दरगह ले छाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुवे मतहारी कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा।

आपे पछताणी। अजराइल फरिश्ता तिल पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सही प्रवान, दूजा सेव नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए, राम नाम धन वखरो नानक सदा ते आए। पौड़ी पंजवा। नारायण लया ना ठूंगड़ा है, पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या। नित विसो चखे निंदा करता पचमुआ। विच देही पखे सच्चे साहिब मारिया, कौन तिसनो रखे। नानक ते शरणागति जो पुरख्या लखे। श्लोक महला पंजवा। नरक कोर बहु दुख घने, अकिरत घना का थान। तिन प्रभ मारे नानका, होए होए मोए हराम। महला पंजवा। अवखत सबे कीतियान, निंदका दारू नाहे। आप लाए नानका पच पच जोनी पाहे। पौड़ी पंजवा। तुस दिता पूरे सतगुरु, हर तन सचिया खुट। सब आंदे से मिट गए जमका पौ छुट। काम क्रोध बुरे आईया संग साधु टुट। विण सचे दूजा सेव दे होए मरसन बुट। नानक कौ गुर बख्शिया नामै संग जुट। श्लोक महला चौथा। तपा ना होवे अंदरों लोभी, नित माया नो फिरे जज मालिया। अगों दे सद्या सत्ते दी पिख्या लै नाही, पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया। पंच लोग सब हसन लगे, तपा लोभ लै रह गालिया। जिथे थोड़ा धन वेखे तिथे तपा पिटे नाही। तन बहुत डिठ तपै तरम हारिया, पाई एहो तपा ना होवी बगला है। बैसाद जना विचारिया, सत पुरख की तपा निंदा करे। संसार की उस्तति विच होवे, एत दुख है।

हो भणियै, जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धणियै। श्लोक महला चौथा। मनमुख मूलों भुलिया, विच लभ लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदरै, शब्द ना करै विचार। शुद्ध मत करतै सब हिर लई, बोलन सब विकार, दितै कितै ना संतोखीऐ, अंतर दिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मनमुखा नालों टुटी भली, जिन माया मोह।

रूप देखे सब दुनिया, गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या शोक करी जय, तो की जय जो अपन जी जय, मैं ना मरो मरबो संसारा।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी, गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक।

खारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चूंगै नित भेड़ राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पद ज्यों जर छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तब की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाजो से।

आप पछाना आपै आप रोग ना व्यापै तीनों ताप आप मारे उल्ट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख सहि समावो आप ना डराओ ना अवर डरावो गौड़ी कबीर जी पिंड मुवे जियो कह कर जाता सबदा तीता ना हदराता जिन राम जानिया तरह पछानिया जो गूंगे साकर मन मानिया ऐसा ज्ञान कथा बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करो जे बहुर ना करना सो पद रवो जे बहुर ना रवना सो ध्यान तरो जे बहुर ना धरना ऐसे मरो जे बहुर ना मरना उल्टी गंगा जमन मिलावो बिन जल संगम मन में नहावो लोचा समसर एहो ब्योहारा तत विचार क्या अवर बिचारा आप तेज बाए पृथ्वी आकाशा ऐसी रहत रहो हर पासा कह कबीर निरंजन त्यावो तित घर जाओ जे बहुर ना आवो गौड़ी कबीर जी ते पदे कंचन स्यो पाइए नहीं तोल मन दे राम लिया है मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत ना पाया राम भगत बैठे घर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत रासिया सो मरना गुर शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन मन मानिया मर मर जाते जिन राम ना जानिया रहाओ मरनो मरन कहे सब कोई सहजे मरे अमर होए सोई कहो कबीर मन भया आनंदा गया परम रहया परमानंदा गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावो खोई तन में ठौर ना पावो लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक पाए दे

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

सूर्य चंद करै उजियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आप ते बांधिया, मोह कै फाद काल सर संध्या, रहा कटी ना कटे टूट न जाई, सास अपन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चब कुमाराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पाव के आपे पवना, जारै खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे नाम है जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो वानो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

बाद सुख मांगत दुखिया गै आवै, सो सुख हमो न मांगिया पावै। बिखिया जो सुरत सुख आसा, कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ। इस सुख ते इस ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सन कादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुरप्रसादी जय दियो नामा, भगत कै प्रेम इन्ही है जाना। इस मन को नहीं आमन जाना, जिसका परम गया तन साच पिछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पेयो, एह मन लीन पए सुख देयो। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा। गौड़ी गुआरे री अहनिस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पए लिव लागे रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होहे नायाना, कह कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोरठ पी, रे जीन लज लाज तोय नाही। हर ताज कतका हूं के जाही रहाओ। जा को ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोही। सो साहेब रहया परपूर।

कहे कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पंच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नेता नित चीत। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक योपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बेगोई। कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई। फासन की बिद सब को जानै, शूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचार है, सूतक तनै ना होई। गौड़ी झगरा एक न बेरो राम, जाओ तुम अपने जन सौ काम रहाओ। एहो मन बड़ा के जा सौ मन मानिया, राम बड़ा कह राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो पाया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। राग गौड़ी चेती

दुचिते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी तारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जा सुने ना हर गुण गावे, बात नहीं असमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाल, आप गए और नहू कहल। छाड़ को चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहू खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना माने को, मुए सराद कराही। पितर पी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै। कुशल पी कैसे होई रहाओ, माटी के कर देवी देवा। तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए। अपन कया ना लेही, सर जियो काटे निर्जियो पूजे। अंतकाल का उपारी, राम नाम की गत नहीं जानी। पै डूबे संसारी, देवी देवा पूजे डोले। पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया। बिखिया सो लपटाना, गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे। ऐसे सुन समाया, अंजन माह निरंजन रही है। बौना पव जल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है। गुरमत मनुआ असर रखो, इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पत प्रगासा। सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निचल सेव कर बासा। तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है, एह जग बेदया भाई। दैद सिर बूंदी पवन चुलावै, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी। कहो कबीर अनपव के देखिया, राम नाम लिव लागी। गौड़ी बैरागण ते पदे, उल्टत पवन चक्र खट भेदे। सुरत सुन अनुरागी, आवे ना जाए मरे ना जीवे। तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना। गुर प्रसाद अगल पई अवरै, ना तर था बेगाना रहाओ। निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर मान्या। अलौती का जैसे भया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यो कहिए, ऐसा कोई बबेकी। कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया, तै उत्पत पर लो नाही। जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाज दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती। हल्की लगे ना भारी रहाओ, अर्ध उर्द दो तै नाही। रात दिन सतै नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहां समाही, आगमा गोचर रह निरंतर। गुर कृपा ते लही है, कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने। सत्संगत मिल रही है, गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे। पवन पूंजी परगासे हो, तृष्णा गूण परी कट पीतर। इन बिद टांड बिसाहे हो, ऐसा नायक राम हमारा। सगल संसार की ओ बनजारा,
रहाओ। काम क्रोध द्वय भय जगाती मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान निबेरै टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सनोरे संतो अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैले कथा का चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंच पदा पेवकड़ै दिन चार है, साहुरड़ै जाना अंधा लोक न जाने मूर्ख ए आना। कहो डडिया

जहते उपजी तही समानी एहबिद बिसरी तब ही पंडित गुणी सूर हम दाते एक है बढ़ ही जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है सतगुर मिले अंधेरा चूकै इन विदमान कलही है तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर रही है कहो कबीर गूंगे गुड़खाया पूछे ते क्या कही है हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह कछ आहा तहा किश नाही पाई तत् नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता एक ही है किसमाही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटै जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बियोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ता को पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इकीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिए तोल ना तुलिए पाचन से रियाई। जो कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकसै नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित घट नाम नाई उपजै फूट मरै जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दुह मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है एहो तो ब्रह्म विचार। ज्यो कासी उपदेश होए मान समर्ति बार। कोई गावै को सुनै हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे। ओरे कर्म तर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे। ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे। ओरे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारे। ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नाहे बिचारे। ओरे उन्मत मान हिरे मन माही गुर का शब्द ना तारे। ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे। ओरे कर्म भाग

तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रच्यो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाच्यो कर कर बार जो नली सुवटा गयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंब का मन बौरा रे त्यो पसरियो उपासार नामन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव। गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी धर एह सार तन कही है जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबने अरसुत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिनको मंदर चौदे ठाठ ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी खिर मैं बिनस जाए हंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जात पावै ता हुक्म नावै इस बेड़े को पार लंगावै गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर पज सारंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नामी जोन छाड़ जो जग में आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तव जठर अग्न में रहता लक्ष चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज सारिंग पानी आपत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछिए डरिए ना नरक निवास होना है सो होई है मने न की जयास
ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਰਹਾਉ। ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰਖੀਐ ਬਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ ਜਿਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਬਿਪਤ ਹੈ ਬਿਦ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ ਜਿਹ ਕਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਰ। ਗੌੜੀ ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਲੇ ਜਿਨ ਭਾਰ ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ ਤੈ ਸੋਇ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ ਰਹਾਉ। ਔਰ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਦੁਖ ਕਰ ਰੋਵੈ ਬਲਾਏ। ਜਹਿ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹਿ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾਗ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮ ਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ ਉਰਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀ ਜੈ ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀ ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ। ਉਵਾ ਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਊ ਰੇ। ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਟ ਭਾਗੋ ਰਹਾਓ। ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਕਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ। ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ। ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀਂ ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇਵਾ।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एहो जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम कर का, जी आए पावै मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसै कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मै रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौकर दे

माई मोहे अवर न जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुण गावै तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत गगन मंडल मैं ध्याना ना, बिखै रोग पै बंधन भागे मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ दूसर मने ना आना ना, चंदन बास भय मन बासन त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर तास प्रभु है थाना ना, तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है ना कोई, अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार, अल्लाह लहंता भेद शय कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे हो पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारण कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार आद मैं जाना लिखियर मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दे जस्तावा, खसम जान खिमा कर रह ता होए न खियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कते ना जाई, अगे गह गै गगन रहाई, कग्गा काट काट निमसै सोई, काट फूटे काट कवे ना होई, ताँ काट माहे काट जो पावा, सो कट शाड अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र है चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्र पत पासा, छक के ना रहो शाड़ के ना आसा, रे मानव मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे शाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जार पर जार जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगरो ही पावा, नन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेरा उपायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देख या टल टल कत ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर या समाई, जाओ डर डर ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करी पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लख जाओ कोई दूर न परे फंक बिचार है ता फल फंक सब तन फार है बब्बा बिन

मनमाना है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग ता कारण व्यापे बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोग कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुध होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थिति कबीर जी की। सलोक पंद्रह थिति सात वार कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लख जो पे ओ आपे करता आपे दे। थिति अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोविंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भय, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्र सैन को राज दिए। जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन, नामे के स्वामी ते उतरे। राग गौड़ी रविदास जी के पदे, गौड़ी गुवारे री। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, मेरी संगत पोच सोच दिन रात।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल।

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, परम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै परम फास, प्रेम

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सो दर तेरा कहा सो कर कहा जित पै सर्व समाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वावण हारे केते तेरे राग परिसो कही है केते तेरे गावण हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जो जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सा साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला चौथा सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमया पारा सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कड़कड़ अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख सुवाना एक दात एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिने अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवै जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पै जन हर त्याया जियो तिन टूटी जमकी फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जियो तिनका पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तानो जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनका नेका अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापै जपै बेअंता तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड्यावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चर करता सोई तुद आपे पावे सोई वरतै जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सिरहिट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब से का जान होई एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदे कर दूजा
ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचा नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै काट ना जाए।

आए तू सर्वे पूर रहया लिव लाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी काली नथ क्या वड्डा भया किस तू पुरख जोरू कौन कही है सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सृष्ट गया आगे अंतरा पायो ताका कंस छेद क्या वड्डा भया। रत्नो पाए तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों छपया एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्थारी राम नाम फल हुआ तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई अमृत पीवै सोई रहाओ जिन पिया से मस्त भय है टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया सगल पवन तेरी माया रारे रूप निरालम बैठा नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी दर्शन रूप अपारा शब्दा नहद सो सौराता नानक कह विचारा। आसा महला पहला मैं गुण गल्ला के सिर पार गली गल्ला सिरजनहार खाना पीना हसना बाद जब लग हृदय न आवै याद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस ली जी ली जय रहाओ। मन की मत मता गल मता जो किश बोली है सब खतो खता क्या मोहल कीच अरदास पाप पुंद साखी पास जैसा तू करै तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जेही तू मत देहे ते ही को पावै तुझे आपे पावै तवै चलावै राग रतन परिया परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते कहो धन माल जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया तामिल सखिया काज रचाया खेल देख मन आनंद भया शह भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा जा सह मिलिया ता जानिया तेहो लोका मैं शब्द रव्या है आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे होरन कार्ज ना होई जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई। पंत नानक सब ना का परे को सोए जिसनो नजर करे सासो हागण होए। आसा महला पहला गृह बन समसर सह सुभाए दुर्मत गत पै कीर्त ठाए सच पौड़ी सचो मुख नाओ। सतगुर सेव पाए रही थाओ मन चूरे खड़ दर्शन जान सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै दुख बिख्या सुख तन पर हरै काम क्रोध अंतर तन हिरै दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहण सहज आनंद सखा सैन प्रेम गोबिंद आपे करे आपे बख्शिंद तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे पेख वर्ण दिसे सब खेहे जो पजै सो आवै जाए नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला एको सरवर कमल अनूप सदा बिगासे परमल रूप उजल मोती चुगै हंस सर्व कला जग दिसे अंस। जो दिसै सो उपजै बिनसै बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद साखा तीन कह नित बेद नाद बिंद की सुरत समाए सतगुर सेव परम पद पाए।
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਭਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित न आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाख, सतगुर सेव अमृत शब्द भाख, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका कोई

तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है, संसवा की ओट लही। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हृदय अलख्या भेवा। नानक राम नाम मन राता, गुरमत पाए सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदे, मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जग हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सौ जग हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बन तन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निराशी रहाओ हौ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से ज रवै पतार तव नानक कंते मन पावै छोड़ वडाई अपने खसम समावै रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी ए

को सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमायस तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखे ना पवै ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसव किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए जोगी जदी जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देस गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी तू साहेब हौ सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर न रहे जैसे पवै उदासे मन मेरा दयाल से तीथिर न रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ फूल माला गल पैरोंगी हारो मिलेगा प्रीतम तब करोंगी सिंगारो पंच सखी हम एक पता

एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगा।

मधुसूदन कर मुंदरी पहरै परमेश्वर पट लेई तीरज तीरज तड़ी बंधावै कामण श्री रंग सुरमा देई मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करेई ज्ञान राओ जब से जय आवै ता नानक भोग करेई आसा महला पहला कीता होवै करे कराया तिस क्या कहिया भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुकम भला तुद पावै नानक ता को मिलै वडाई साचे नाम समावै रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाहड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सकै कोई जे को दरगह बहुता बोलै नौ पवै बाजारी सतरंज बाजी पक्कै नाही कच्ची आवै सारी ना को पढ़िया पंडित बीना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहियै बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मनै मैं मुंदरा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करै पला कर मानो सह

आए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोवो हर सिंचव गुरमत जेत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लावो मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हौं तब लग सुमारो नाम मेरे मन ऐसी भगत बने आई हौं हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुने उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुन गावे कब को नाचे पाप पसारे कब को हाथ फसारे हाथ पाप पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे कब को लोगन को पति आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हृदय सत्य आवो ता जय जय करे सब कोए आसा महला चौथा सतसंगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कड़ चानन अज्ञाना दे राजाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे भाई हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जपो मन मेरे अनदिन हर लिव लाए जो इच्छाओ सोई फल पावो फिर भूख न लग आए आपे हरे परंपर करता हरे आपे बोल बुलाए सही संत भले तुद पावे जिनकी पत पावे थाए नानक आखना राजे हर गुण ज्यो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग यासा कर अठवां राग यासा कर अठवें के काफी महला चौथा आया मरण तो राहो हम मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है गुरपूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ पूर्व लिखे डेहे से आए माया चलन अज के कल तुरों फुरमाया बिरथा जन्म तिन्ना जिनी नाम विसारिया जुए खेलन जग के हो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सचे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया गुर प्रसादी बुझ सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया दर सचे सचियार महल बुलाया रहाओ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है अंदर नाम ते आए हर गुण गाई है अंतर वस्जा नेक मनमुख नहीं पाई है हम मैं गर्भ है गर्भ आप खुआई है नानक आपे आप खुआई है गुरमत मन पर गास सच्चा पाई है राग आसावरी कर सोलवे के दो महला चौथा सुधंग एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ आंदिन हर नाम कीर्तन कराऊं सतगुर मोको हर नाम बताया हौ हर बिन खिन पल रह ना सकूं रहाओ हमरे श्रवण सिमरन हर कीर्तन हौ हर बिन रह ना सकूं हौ एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिद तार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान आसावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बतावो री माई
हाँ हर बिन खिन पल रह ना सको, जैसे कर हल बेल रिजाई रहाओ। हमरा मन बै राग बिरक्त पायो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सके, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राग शरण जगदीशर प्यारे, मोहे सरदा पूर हर गोसाई। जन नानक कै मन आनंद होत है, हर दर्शन निमख दिखाई। राग आसा कर दूजा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस पौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे। ऐसा देख बिमोहत होए, साधक सिद्ध सुरदे मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहाओ। एक फिरे उदासी तिन काम वे आपे, एक संचय गृही तिन होए ना आपे। एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुर पावे। तप करते तपसी पूलाए, पंडित मोहे लोभ सवाए। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे दे कर हाथ। ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा।

मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुरसबदी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए, जगतो दारण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अगाए। जन्म दोख परे मेरे पछ है, अब पकड़े नहीं।

हर हर राय। नाम तेरा जब जीवै नानक ओत पोत मेरा संग सहाय। आसा महला पंजवा अरड़ावै बिललावै निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै नाले लै सधावै अनहोंदा अजगर भार उठाए निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारै जे होए बतीतै सो नानक आख सुनावै। भगत जना कौसदा आनंद है।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहने स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै सोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

जागे। कहो नानक गुण गाइए नीत, मुख उजल होए निर्मल चीत। आसा महला पंजवां, नौ नित तेरह।

नामन रोम नहारा अवनासी अवगात्या गोचर उसदा सलामत खसम हमारा रहाओ तेरे दा

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान। नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अविनाशी घट घट चीन। आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया, पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही।

हर आज मिलक जोबन ग्रह शोभा, रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी। आगे दरगह काम न आवे छोड़ चला अभिमानी, काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर तिहाई है रहाओ। महाबचित्र सुंदर।

का छोड़ चलिया एक दिहाड़े। कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने। उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसान। संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा, महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन। महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु। नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। और आगे आसा कर शेवा, महला पंजवा। जो तुद पावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई। करण कारण समरथ अपारा, यवर नाही रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्यान पजन की। जो तू करै करावे रहाओ, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे। साध संग रस पाया, तृप्त अगाए सही जन पूरे। सुख निदान हर गाया, जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी। ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई। से सह पले भगवंता, परम मोह त्रोह सब निकसे। जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना। हर नामे रंग समाया, आसा महला पंजवा। जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे। इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावे। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साके काहू बात। आगे ठौर ना पाया रहाओ, किरत पया निंदक बपरे का। क्या ओ करे बिचारा, तहा बिकूता जय कोई ना रखे। ओ किस पै करे पुकारा, निंदक की गत कतहु नाही। खसमे एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की। त्यों संतन सुख माना, संता टेक तुम्हारी स्वामी। तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे। निंदक दिए रोड़ाई, आसा महला पंजवा। बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए। इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ न मरे। नाम न सुनई डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई। भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तरकन लागा। तत् योग ना पिछाने, उगर गया जैसा खोटा टबुआ। नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने। उसते कहां छिपाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा। बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया। अपना हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा। उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे। पंच जनाले वसगत रख, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखावज ताल घुंगरू। अनहद शब्द बजावै रहाओ, प्रथमे मन परबोधै अपना। पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै। मुखते सगल सुनावै, कर संग साधु चरण पखारै। संत तूर तन लावै, मंतन अर्प तरे गुरिया गै। सत पदार्थ पावै, जो जो सुने पेखे लाए सरदा। ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे। नानक गुरमुख जागे,
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਈ ਰੇ ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋਕੇ ਹਰ ਕੂਕਰ ਤਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛਪਰਾ।

आई सर्व सुखा बने तेरे ओले भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाओ हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा महा निर्वाणे जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवाण नामृता सोई निर्वाण जा को मिलियो नाम निधाना पंडित नानक ताका पुरख जाना आसा।

शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाइए, यो अस्थान गुरु ते पाइए, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा, हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै, सो नाम जपै जो जन तुद पावै, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तहै दुख डेरा, हुक्म बूझै सोई परवान, साध सब जा का निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरा मन सुख पाया, आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई, रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई, मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगिश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां ब्या पै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सपने नाहें,

प्रभ की प्रीत सद सोभावंत, प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो भव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलो उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवां, भूपत होए कै राजक माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंगरसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवां, इनस्यो प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी, अगर उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ै नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पहु चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवां, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार, संत रहत सुनो मेरे भाई, उवा की महिमा कथन ना जाई, रहाओ वर्तन जा कह केवल नाम, अनंद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जा कह एक समान, प्रभ अपने बिन अवर ना जाने, कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली, ताका संग बांछे सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजे गुणतास, आसा महला पंजवां, सगल सुख जप एक नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साध का संग, जिस पेड़त लागे प्रभ रंग, गुरप्रसाद ओ आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकि गत में तो कहन ना जावे, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकि पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गत में तो कथन ना जाए, आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ, मोहे गरीब को लिहोर लाए, नानक आए पै सरनाए, आसा महला पंजवां, आठ पहर उद के सुनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़ै नाही, बहुर बहुर तिस लागै पाई,
ਸਾਲ ਗਰਾਮ ਹਮ।

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूलै, ता का धूप सदा प्रफुलै, काट काट सपट है रे जाका, अपग सभा संग है सादा, आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत, जिसे प्राप्त तिसही लहना, संत चरण ओ आयो सरना, हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नो दान, आसा महला पंजवा पंच पदा, जेह पेंड है लूटी परिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी, सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी, जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट, दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ, पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा, भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा, वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा, साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार, तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए, नानक ता की परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा, हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई, गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ, तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै, आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार, हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे, पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग, कहो नानक ता का थिर सोहाग,

तपत हरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अविनाशी अगमे अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मनमुख मूराखा गुरु नानक बहां।

पंच दूत सब वसगत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा, गाव लेहे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पावे, अवर काहू पह भौ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ, जा का दान निखूटे नाही, भली भांत सब सह समाही, जा की बख्शना मेटे कोई, मनवा साइय साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण, प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण, ओट गही निरपो पद पाई है, सास सास सो गुणित गई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नजर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुरपास, नानक मंगे हर तन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सल का होवा सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल ते सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनाशे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अग्न बुझी

मन बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वड़े भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर सच

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक की।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेख सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पस हरे आओ तैसा संसार सब, नानक बंधन काट मिलावो आप प्रभ। आसा महला पंजवां, हब्बे थोक विसार हिको ख्याल कर, झूठा लाहे गुमान मंत निरप तर। आठ पहर सालाहे सृजनहार तू, जीवा तेरी दात कृपा करो मूं रहाओ। सोई कम कमाए जित मुख उजला, सोई लगे सच जिस तू देहला। जो न टहंदो मूल सो कर रास कर, हिको चित वसाए कदे ना जाए मर। तिन्ना प्यारा राम जो प्रभ पाणिया, गुर प्रसाद अकथ नानक बखाणिया। आसा महला पंजवां, जिन्ना ना विसरै नाम से कनेहा, भेद ना जानो मूल साई जेहा। मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया, सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे, जिन मन उठा आप पूरे भगत से। जिसनो मन्ने आप सोई मानिए, प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए। दिन सरैण आराध संभाले साह साह, नानक की लोचा पूर सचे पातशाह। आसा महला पंजवां, पूर रया सर्व ठाए, हमारा खसम सोए। एक साहेब सिर छत दूजा नाहे कोए, ज्यो पावै त्यों राख राखण हारिया। तुझ बिन अवर ना कोए, नदर निहारिया रहाओ। प्रतपाले प्रभ आप कड़कड़ सारी है, जिस मन उठा आप तिसना विसारी है। जो किश करे सो आप अपन भाणिया, भगता का सहाई जुग जुग जानिया। जप जप हर का नाम कदे ना चूरिया, नानक दर्स प्यास लोचा पूरी है। आसा महला पंजवां, क्या सोवै नाम विसार, गाफल गहलिया। किती इत दरियाए वंजन महिंदिया, बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगिया। आठ पहर गुण गाए साधु संगिया रहाओ। भोगे भोग अनेक विणना मैं सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मलना, बिन सिमरन तन शार सर पर चलना। महा बिखम संसार विरले पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवां, कोई न किसी ही संग काहे गर्बी है, एक नाम आधार पौजल दरबी है। मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन धीरे रहाओ। राजमाल जंजाल काज ना कित गनो, हर कीर्तन आधार निहचल एहो तनो। जेते माया रंग तेत पछावया, सुख का नाम निदान गुरमुख गावया। सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे, आस भरोसा खसम का नानक के जियरे। आसा महला पंजवां, जे सिमरत दुख जाए सह सुख पाईऐ। रैण दिनस कर जोड़ हर हर त्याईऐ। नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए, सर्व रहया परपूर सच्चा सच सोए रहाओ।
अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान जोग तिसै अराध मना विनाशै सगल रोग। राखन हारे अपार राखै अगन माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तप्त जाए। सुख सहज आनंद घना नानक जन तूरा कार्ज सगले सिद्ध पए भेटिया गुरपुरा। आसा महला पंजवा गोबिंद गुणी निधान गुरमुख जानिया होए कृपाल दयाल हर रंग माणिया। आवो संत मिला हर कथा कहानियां अंदर सिमरो नाम तजलाज लुकानिया। रहाओ जप जप जीवा नाम होवे अनद कणा मिथ्या मोह संसार झूठा विणसना। चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया तन सुहावा मुख जिन हर त्याया। जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत एकत्र होए रस कस सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है मिल पापा मुंच है। तत विचारो संत जनो ताते बिघन ना लागे खीन पए सब तस्करा गुरमुख जन जागे। रहाओ बुद्ध गरीबी खर्च लै हो हम मैं बिख जा रो साचा हट पूरा।

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वडियाई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हों चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कह उजली तिस दासी गनिया रहाओ। वे प्रवाहो आनंद में नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकर सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिय एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिछायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तऊ लो जौ मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लाग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सवाओ रहाओ। सगन अप सगन तिस कौ लग है जिस जीत ना आवै,
तिस जम नेड़ न आवई जो हर प्रभ पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगै पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाउ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध, कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सतपुरख की, सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा, अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के व्यवहारी। अवर बिसारी बिसारी, नाम दान गुरपुरे दियो, मैं इहो आधारी रहाओ। दुखन गावो सुख पी गावो, मार्ग पंथ समारी। नाम दृढ़ गुरमन में दिया, मोरी तसा बुजारी। दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत संगत में विसास होए, हर जीवत मर्त संगारी। जन नानक कहो एहो दान देहो, प्रभ पावो संतरे नियुर तारी। श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो, मस्तक गुर चरनारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर दसवां महला पंजवा। जिसनो तू असर कर मानै, ते पाहुन दो दाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री, सब मिथ्या असनाहा। रे मानु क्या करे है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे वस्त्र देह उडाने। दिन दोए चार पोराहा, पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा। जैसे अंब कुंड कर राखियो, परत सिंध गल जाहा। आवगे आ गया पार ब्रह्म की, उठ जासी मोहत चसाहा। अरे मन लेखे चाले लेखे बैसे, लेखे लेंदा साहा। सदा कीर्त कर नानक हर की, उबरे सतगुर चरण उटाहा। आसा महला पंजवा, अपुष्ट बाते पई सिजरी। दूत दुष्ट सजनई, अंधकार मैरतन प्रगासियो। मलीन बुद्ध हशनई, जो कृपा गोबिंद पई। सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई रहाओ। मोहे कृपन को कोय ना जानत, सगल पवन प्रगटई। संग बैठनो कही ना पावत, हुन सगल चरण सेवई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल त्रिसन बुझ गई। एक बोल पी खबतो नाही, साध संगत सीत लई। एक जीही गुण कमन मखाने, अगम अगम अगमई। दास दास दास को करियो, जन नानक हर शरणई।

ताया सस्त वखर तू किन्नै नाही पापी बादारे नाया सतगुर तेरी आसाया पदत पावन तेरो नाम पार ब्रह्म मैं एहा उटाया रहाओ गंदन वैन सुनै उरझावै नाम लै ते अलकाया निंद चिंद को बहुत उमाहयो बुझी उल्टाया पार तानो पार तानो परती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच धर्म स्यों रुच नहीं आवै सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपा प्रभ ठाकर दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकर भगत टेक हरनाया नानक आहे शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाए मोह माया कर बांदे जह जैनो सो चीत न आवै अहम बुद्ध पय आंदे मन बैरागी क्यों ना राधे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ मेरी मेरी कर तो दिल रैन बिहावै पलखिन छीजे अरजादे जैसे मिठे साध लुबाए झूठ तन दुर्गा दे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बिदाता बहुर बहुर जन्मा दे जो भयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुरमिल सब सुख ला दे कहो नानक दरैन ते आवो मार काढ़ी सगलियो पा दे इओ जपियो पाई पुरख बिदाते भयो कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा आसा महला पंजवा निमुख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावै करी मुहत रंग माणै फिर बहुर बहुर पछतावै अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़ै आया रहाओ पलक दृष्ट देख भूलो आग नीम को तूमर जैसा संग बिसियर स्यों है रे तैसे ही एहो पर ग्रहो बैरी कारण पाप करता बस्त रही अमाना छोड़ जाए तिन ही स्यों संगी साजन स्यों बैराना सगल संसार एह बिद व्याप्यो सो उबरियो जिस गुर पूरा कहो नानक भव सागर तरियो पय पुनीत शरीरा आसा महला पंजवा दो पदे लूक कमानो सोई तुम पेखियो मूड मुग्ध मुकरानी आप कमाने कौले बांदे फिर पाछै पिछतानी प्रभ मेरे सब दे आगे जानी भ्रम के मूसे तू राखत परता पाछे जी की मानी रहाओ जित जित लाए तित तित लागे क्या को करे परानी बख्स लै हो पार ब्रह्म सुमामी नानक सद कुर्बानी आसा महला पंजवा अपने सेवक की आपे राखै आपे नाम जपावै जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावै सेवक को निकटी होए दिखावै जो जो कहे ठाकर पह सेवक तत्काल होए आवै रहाओ ते सेवक कह हों बलिहारी जो अपने प्रभु भावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवै आसा कर ग्यारवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नटुआ पेख दिखावै बहुबिद जैसा है ओह तैसा रे अनक जोन प्रम्यो परम पीतर सुख है नाही परवे सारे साजन संत हमारे मीता बिन हर हरिया नीता रे साध संग मिल हर गुण गाए ओ जन्म पदार्थ जीता रे रहाओ

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन सच पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हम मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने मनमुख महला शब्द ना पछाण। गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम अनुराता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोजल है घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सतगुर मिले काल कंटक मारे सच पे लै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिपवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपतापै गुरमुख चीन्या हर प्रभ आपै। मन बैरागी हमें त्या

राम रसायन यो मन माता, सर्व रसायन गुरमुख जाता, भगत हेत गुर चरण निवासा, नानक हर जन के दास दासा। आसा महला पहला, तन बिनसै तन का को कहियै, बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई, अहनस निर्मल हर लिबलाई। राम नाम बिन कमन हमारा, सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो, आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा, दुबदा लागे नाम विसारा, जिस तू बख्शै नाम जपाए, दूत ना लाग सकै गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला, ज्यो भावे त्यो रख दयाला, गुरमुख राम मेरा मन पाया, रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता, हर हर सिमरन किल विख हंता, तू आप लावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा, गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखै, विण गुर शब्द जन्म के लेखै, देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाकी भक्त हित मुख नाम, संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि ध्यान, छूटै गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागै, जो जन राम नाम लिव जागै। भगत वचल भगता हर संग, नानक मुक्त पै हर रंग। आसा महला पहला इक तुगी, गुर सेवे सो ठाकर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै। राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी। रहाओ बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तरम हो किया, बंधन पोत कलत मन बिया। बंधन किरखी करे किरसान, होमै डन सह राजा मंगै दान। बंधन सबदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार, नानक राम नाम सरणाई, सतगुरु राखे बंधना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एको ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़, महला अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखै वेस। रहाओ जदो सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईया, दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया, गरी शोहारे खांदिया, मान से जड़िया। तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया, धन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए, जे तिस पावै दे वड्याई, जे पावै दे सजाए, अगों दे जे चेती है, तां कायत मिलै सजाए। साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाबर वाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए, इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए, चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़ै नाए। राम न कबहू चेते, हुण कहण ना मिलै खुदाए, एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछै सुख, इक ना एहो लिखिया बैबै रोवै दुख। जो तिस पावै सोथी है, नानक क्या मानुख। आसा महला पहला, कहा सो खेल तबेला कोड़े, कहा पेरी सहनाई, कहा सो तेग बंद गा ढेरड़, कहा सो लाल कवाई, कहा सो आरसिया मो बंके, ऐथे दिसै नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, ए कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवै भाई रहाओ। कहा सो करदार मंड मेला, कहा सो बंक सराई, कहा सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहा सो पान तंबोली हर मां, होया शाही माई। इस जर कार

पूरी मत पाई, आद जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। गुरबिन किने ना पायो, केती कह कहाए, आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगदरड़ाए। मानमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए, बिन हर नाम ना छूटसी मर नरक समाए। जन्म मरे प्रमाई है हर नाम ना लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे। करनी सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड़ियाई। गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए। नानक सिर दे छुटिया दरगे, पत पाए आसा महला पहला। रूड़ो ठाकर महरो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाग सतगुर मिले पाइये पग निर्बाणी। मैं ओ लगिया ओ लगी हम शोरू थारे, जो तू राखे त्यों रहा मुख नाम हमारे। रहाओ दर्शन की प्यासा कणी, पाणे मन पाईए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया। पाणे पत पाईए साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई जै देखा तैं रव रहे किन कीमत होई। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहाली है इं कीमत पाई। जीवंदियां लाह मिले गुरकार कमावे, पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावे। मनमुख तोटा नित है परमै परमाए, मनमुखियां दे ना चेताई क्यों दर्शन पाए। तां जग आया जानिए लाच साचे लिव लावे, तां जग आया जानिए साचे लिव लाए। गुर पेटे पारस पए ज्योति ज्योत मिलाए। अहनिस रहे निराल मो कार तुर की करनी, नानक नाम संतोखिया राते हर चरणी। आसा महला पहला केता आखने आखिए, ताके अंत ना जाना। मैं नितरिया तर एक तू मैं तान सताना। नानक की अरदास है सच नाम सुहेला, आप गया सोजी पई गुर शब्दी मेला। रहाओ हाँ मैं गर्व गवाई है पाइये विचार, साहब से मन मान्या दे साचा धार। अहनिस नाम संतोखिया सेवा सच साई, ता कहो बिघन ना ला गई। चल हुक्मर जाई हुक्मर जाई, जो चले सो पवे खजाने। खोटे ठवर ना पाए नी रले जूठा ने। नित नित खरा संभालिए सच सबदा पाई है, खोटे नजर नयाब नी ले अगन जलाई है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्मा सोई, एको अमृत बिरख है फले अमृत होई। अमृत फल जिनी चाखिया सच रहया गाई, तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदा रजाई, अवगुण यारे कौ गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा महला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जत दुपाणिया। जो लग जियो प्राण सच ते आई है, लाह हर गुण गाए मिले सुख पाई है। रहाओ सच्ची तेरी कार दे दयाल तू, हौ जीवा तुद सा लाहे मैं टेक्या धार। तू दर सेवक दरवान दर तू जानही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही। दरगह ना महदूर गुरमुख जानसी, वेला सच प्रवान शब्द पछाण सी। सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से, मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे। सच्चे सच्चा

पेटियो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो ने है साध तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तुद पावै सो भला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ भेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरहड़े कर चौथा शंता की जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत दुख बिसरै प्यारे सो क्यों तजना जाए एहो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरणी पाए जो जन राते राम सिंह प्यारे अंतना काहू जाए हर जिन्नी चाख्या प्यारे तृप्त रहे गाए अंचल गहया साध का नानक पैव सागर पार पराए जन्म मरण दुख कटिया प्यारे जा पेट हर राए सुंदर सुगड़ सुजान प्रा मेरा जीवन दर्श दिखाए जो जी तुझते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिख खाए जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुक्ते कह न जाए साची प्रीत ना टुटे प्यारे जो जुग रही समाए जो तुत पावे सो पला प्यारे तेरी अमर रजाए नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सहि सुभाए साबे तुम ही जानते प्यारे किस पै कहो सुनाए।

ज्यों पावै त्वै चलाए जियो। एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा। हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना। गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना जन नानक मुस्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना। हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जगद उतर तरिया। हम मूर्ख मुक्त शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे। गुरपुर हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा। मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे। हाँ मांगाऊं सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति हर नाम तराया आसा महला चौथा। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा। हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तुर भाग वड्डे हर पाया नानक रस गुद्धा। पंथ दिशावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली। मेरा मन तन्ना माधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली। गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुन्ने राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने। हाँ मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिन्नी देहुरी अमृत बुर के राम राजे। जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके। हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा। हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे। तन तन वन जारा वणज है गुर शाहो साबासे जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे। सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत वन जारा राम राजे। सब भांडै तुदै साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे भांडे विच वस्त सा निकलै क्या कोई करै विचारा। जन नानक हर बख्शिया हर भगत भंडारा हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे। हर नाम सलाह है दिन रात एहा आस आधारो। हम मूर्ख किशु ना जानहा के पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनिहारो। ज्यों पावे त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम पूल विगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए। आसा महला चौथा। जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञाना देरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया। हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहुना चलिया जन नानक नाम आरा दिया आराध हर मिलिया। जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जगे आए राम राजे। एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्ते हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए। मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए। तू हर तेरा सब को सब तो दियो पाए राम राजे। किश हाथ किसै दै किश नाही सब चलै चलाए। जिन तू मिल है प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर भेटिया हर

क्या की जाए, हर करता सब किश जानदा, सिर रोग हाथ दी जाए, जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है, हर भगत हर लीजै, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगुण सियाने राम राजे, जे बारों पुल चुक बोल दे, पी खरे हर पाणे, हर संता नो होर थाओ नाही, हर मान निमाणे, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान पालिया, लै तूर मुख लावा, गुरसिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा, गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवै पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे हुर खाए कन्हेरी, जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुरसिखा मन मिठा, हर दर गै गुरसिख पै नाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया, हर हर मन बुठा, आसा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे, तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै, जो हर नाम ते आवै, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ ना आवै, जन नानक हर कृपा कर, नित जपै हर नाम तरावै, जिनी गुरमुख नाम ते आया, तिन्ना फिर बिघना होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिनी सतगुर प्यारा सेवया, तिन्ना सुख सद होई, जिन्ना नानक सतगुर पेटिया, तिन्ना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चख मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जो भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लए छडाया, आसा महला चौथा, शंत कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन परदेसी वे प्या

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञान ताल बटावै। खिसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु प्रदेशत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरनायो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखन कौ जय होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकी शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम हो बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैकिन लहया। जल थल महियर पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग देखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद अंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत। शंत पिनी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदे नो, चरण कमल ध्यान हिरदै प्रभ सिर नाही एक खिनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िए आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखैगामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तर सब हरे। मन इच पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਬਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ।

ते ठाकर सरणी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साह संगत आप होवा आप जगत राया राख लिए रखन हारे सदा निर्मल करनी नानक नरक न जाहे कबहू हर संत हर की सरणी आसा महला पंजवा वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती रावो सवा परना प्रभ संग सुहंती संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सरैणी रावी है सा सा चितार जीवा प्रापे खर गुण गावी है बिरहल जाया दर्श पाया आम्यो दृष्ट सिंचंती बिनवंत नानक मेरी इच पुन्नी मिले जिस खोजंती जंती

प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात है मकरंद रस बासन मात है प्रीत कमल बंधावत आप। चात्रक चित प्यास, चात्रक चित प्यास है कान बूंद बचित्र मन आस है अल पीवत बिनस ताप, तापा बिनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन यातका नाम। सुंदर चतर सुजान स्वामी कमन रसना गुणपणा गै पुजा लेवो नाम देवो दृष्ट धारत मिटत पाप। नानक जंपै पदत पावन हर दस पेख तो नै संताप। चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ है रख लेवो सरनिया नाथ है मिल चाओ चाई ले प्राण। सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान है मन लुबद गोपाल ज्ञान है जाचक जन राखत मान। प्रभ मान पूर्ण दुख बदीर्ण सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुभागे मिलना हा से सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी सगल कलमल पय हान। बिनवंत नानक मेरी आस पूर्ण मिले श्री तर गुण निधान। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोक पी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी। सलोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस जे देवते किए करत ना लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवै सूरी चढ़ै हजार एते चरण होंदियां गुरबन कोरिया अंधार। महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबू वाड़ ज्यो सुंजे अंदर खेत खेतै अंदर छुटिया कहो नानक सवना। फलियै फुलियै बपड़े पी तन विच सुवा पौड़ी आपी न आप साजियो आपी न रचियो नाओ दुई कुदर साजियै करासन डिठो चाओ। दाता करता आप तू तुस दे मैं करै पसाओ तू जानो ई सब सह दे लै सह जिंद कवाओ करासन डिठो चाओ। सलोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दाख्या लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक साहित्य आयन सच जो मर जमे सो कच निकच। महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझै सब पाओ। वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप। नानक कारना कथनी जाए कीता करना सरवर जाए। महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश। एक ना पाने कढ़ ले एक ना माया विच निवास ए प्याख ना जापई जे किसे आने रास। नानक गुरमुख जानी है जा को आप करे प्रगास। पौड़ी नानक जी ओ पाए कै लिखना मैं धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़ै चुन वख कढे जो जमालिया थाओ ना पायन कूड़ियार मुह कालै दुजग चालिया। तेरा नाय रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडै विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगै प्राणी विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखै हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार।
ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾਕ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ, ਆਪੀ ਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਥ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਉ ਨਹੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੂਆਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੈ ਵਿਚ ਪੌਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰੀਆਓ, ਭੈ ਵਿਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿਚ ਚੰਦ, ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਭੈ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿਚ ਅਡਾਣ ਆਕਾਸ, ਭੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਨੱਚੈ ਮੰਗਤੇ ਗੇੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਰ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ, ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹੋ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ, ਨਾਨਕ ਮੂਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਏ ਨਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਲਾਏ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਚਾਟੈ ਪਾਏ, ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾਏ,

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कने ना पायो, बिन सतगुर कने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नु कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हों विच आया हों विच गया, हों में जमया हों विच मुआ, हों में दिता हों विच लया, हों विच खटिया हों विच गया। हों विच सचियार कूड़ियार, हों विच पाप पुन विचार, हों विच नरक सुरग अवतार। हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरी है हों विच धोवै, हों में जाति जनसी खोवै। हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मोख मूत की सार ना जाना। हों विच माया हों में छाया, हों मैं कर कर जन तो पाया। हों मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिया लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। महला दूजा, हों मैं यहा जात है, हों मैं कर्म कमाहे। हों मैं एही बंदना फिर जोनी पाहे। हों मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए। हों मैं एहो हुक्म है पया किरत फिर आहे। हों मैं दीर्घ रोग है दारू पिए समाहे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जन इत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो साहित्य आया। उन्नी मंदै पैर न रखियो, कर सुकिरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला, नित देवै चढ़ै सवाया। वड्याई वड्डा पाया। श्लोक महला पहला, पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां हां। दीपां लोवां मंडलां खंडां वरपंडां हां। अंडज जेरज उत्पजा खानी सेत जाहा। सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता हा। नानक जन तो पाए कै संभाले सब नाहा। जिन कर तय करना किया चिंता पे करनी ताहा। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग। नानक सचे नाम बिनु क्या टिका क्या तग। महला पहला, लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान। लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेवान। लख सुरतन संग्राम रण में छुटै प्राण। लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करता करना किया लिखिया आवन जान। नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा सहब एक तू, जिन सचो सच वरताया। जिस तू देह तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिनकै हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ। पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास। नानक लेखै एक गल होर हों मैं चखना चाख। महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया। बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या। बहु पेह किया देही दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्तर ना पहरै एनस कहरै, मोन विगूता क्यों जागै गुर बिन सूता। पग उपे ताणा अपना किया कमाणा, अलमल खाई सिर शाही पाई। मूर्ख अंधै पत गवाई, विण ना वै किश थाए ना पाई। रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध ना जाणै फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नजर करे सो पाए, आसान देसे ते नह केवल। हों मैं शब्द जलाए। पौड़ी भगत तेरे मन भावदे, दर सोहन कीर्त गावदे। नानक करमा बाहरे
ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਨੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਉਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੁਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹੋਂ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰੈਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਾ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲ ਕਾਲ ਖਬੇ ਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਆਪ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਐ ਤੋ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ

वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास, साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास, कूड़ कमाणै कूड़ो होवै नानक सिफत विगास।

नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया।

आओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई। हर का बिलोवना मन का बिचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। कहो कबीर नजर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आसा बाती सूकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक सो धुआं, रव रहया एक अवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब, भूल बिगाड़ो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाही परम पद दूरे। आसा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख स्थेते। रा मैया हो बारक तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा। रहाओ जे अत क्रोप करे करताया, ता पी चीत ना राख समाया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा। देहे बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दऊ समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन को पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। भूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है दे ओ। रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर दे ओ। तीन देव प्रतख तोरै, करै किसकी से ओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गण नहारे खाओ। पात पहत यार लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कछ तप ना कियो। तीस बरस कछ देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ वार करै। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरै। चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर आसार बह। जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करै। हर जियो कृपा करै लिव लावै, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुऐ लै ना गयो। आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। अहे रखवाद ना कीजिए।

आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए, कहां सागत पै हर गुण गाए। राम राम राम रमे रम रही है, सागत स्यों भूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर कौ दूध पी आए। सत संगत मिल बबेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साध सुहान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। अमृत लै लै नीम सिंचाई, कहत कबीर ओवा को सहज ना जाई। आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई, तेह रावण कर खबर ना पाई। क्या मांगो कि थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई रहाओ। एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया ना बाती। चंद सूरज जाके तप्तर सोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। गुरमत रामै नाम बसाई, आश्चर रह ना कथू जाई। कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त ना होई। आसा पहला पूत पिछैरी माई, गुर लागो चेले की पाई। एक अचंबा सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई रहाओ। जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा लै गई बिलाई। तले रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चार भैस चरावन जाई, बाहर बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बूझे, राम रमत ते सबके सूझे। बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जियो के ते पदे अठ। दो तुके सत, एक तुका एक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बिंद ते जिन पिंड किया। अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया। बहुर लागी माया,

तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर गयाना। तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा, सुपने जैसा जीवन सुपन समान। साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिरलीन। रहाओ नैन देख पतंग उर्जै, पास ना देख आग। काल फासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर, तरन तारन सोए। कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई। तागा तंत साज सब थाका, राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे, अल्लाओ स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखाने, अल्लाह नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय बिचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो।

आसा सेख फ्री जियो की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीये रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन धन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुंह तेरी पनै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरी दै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन होसी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़ियां मनोम चिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आईए झूठी दुनिया लग ना आप वजाइए बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दिया शे मां तुड़न दिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जेरा लै कट अंतर पूजा होए पूजा की चै नाम ते आई है बिन नावे पूजना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वह कोए झूठ लह जियो मन जी है मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देवे सो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रह गोबार प्रीतम क्यों बिसर मेरे प्राण आधार जाकी भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके तिर पवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिरस निर्मल मन मुख रैण आधार सिद्ध समाद करै नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत जोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेवियै मना जित सेवै गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रह जरा का पौ ना हो वई जीवन पदवी पाए रहाओ
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ, ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ, ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਇਹਾ ਸੇਵ ਬਣੀ ਜੀ ਓ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਲੈ, ਜਹਾਂ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹ ਜਾਈ, ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੁਗ ਮਾਹੇ ਨਾਮ

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़े उड़िया वैसा कोसा। तिस पाछे बचरे शरिया, उन कमन खलावे कमन चुगावे। मन में सिवरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करे खट करमा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरे हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा तारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त न को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसराओ मन ते हर हर, साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसै। हर तन जागत सूता रहाओ, हर तन इशनान हर तन ज्ञान। हर संग लाए ध्याना, हर तन तुल्हा हर तन बेड़ी। हर हर तार प्राणा, हर तन मेरी चिंत विसारी। हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नवनिध पाई। हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो तोट न आवै। हलत पलत कै संगे, लाद खजाना गुरु नानक कौ दिया। एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किले विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सधी जापो, जा का अंत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर। सदा भजहो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम कहो होए दयाला। संत

कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवै काम शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम आगम दयाल प्रभु ऊचा शरण साधु जोग तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुरसन जोग गुजरी महला पंजवा आपना गुर सेव सदी रमह गुण गोबिंद सास सास आराध हर।

तत डाला सर्व ज्योत निरंजन संभू छोड़ो बो जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै छोड़ो माया जाला मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथियले सो वै जे जाने रोगी तिस कारण कामना तंदा नाही तंदै गिरही जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत ते आया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधं जगत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुन नागरम बेख तज अमृत पी आया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभ दाते ताके अंत न परै सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरासा देवनहार ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम दे सुख पाई ऐ तेरी भगत परे भंडार रहाओ सुन समाद रह लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल धरण गगन तह नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मग ना छाया ना सूरज चंद ना जोत्या पार सर्व लोचन शब्द दृष्ट लोचन अभ्यंतर एका नदर सोत्र पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा।

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारे, शिव कर नींद ना होई। सकती कर जगत सूता, नाचे टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई। सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी, सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी, जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए, से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे सिउं लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरे ता शब्द विचारे, ता सच पावे कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिन को कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरै, सा वेला बिरथा जाए, साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचे जो तुद पावे, जे गुरमुख शब्द विचारी, कहो नानक से सहे सुख पावे। जिन को नजर तुम्हारी, गुजरी महला चौथा कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन जियरा रह ना सके, जो बालक खीरे आधारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिन को कृपा तुम्हारी रहाओ, सनक सनंदन नारद मन सेवै, अंदर जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहलाद जन आए, तिनकी पै सवारी। अलख निरंजन एको वरतै, एका ज्योत मुरारी। सब जाचक तू एको दाता, मांगे हाथ पसारी। भगत जन

जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू तिन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लव लाए। पौड़ी टाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर तीरक होए पूरा पाए सी, जो तुर लिखिया लेख उसे कर्म कमाए सी। जां होवे खसम दयाल ता महल कर पाए सी, सोपरा मेरा अत वड्डा गुरमुख में लाए सी। श्लोक महला तीजा। सबना का सहु एक है सद ही रह हजूर, नानक हुक्म ना मनई ता कर ही अंदर दूर। हुक्म पीत ना मनाए सी, जिन को नजर करे हुक्म मन सुख पाया, प्रेम सुहागण होए। महला तीजा। रैन सबाई जल मुई कंत ना लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राओ। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर एको दाता उपाय कितै ना पाई, हर कर्म विधाता गुर शब्दी हर मन वसै। हर सहजे जाता अंदर हो तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख बोलाता। श्लोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए, एस नो कूड़ बोल के खवाली है जे चलद्या नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हो ता माया मोहया फिर फिर आवा जाए। नानक हुक्म ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा। एको निश्चल नाम तन होर तन आवे जाए, इस तन को तस्कर जो है ना सकई ना ओ चका ले जाए। एहो हर तन जीए सेती रव रहे आ, जीए ना ले जाए पूरे गुरते पाई है। मनमुख पल्ले ना पाए, तन वापारी नानका जिन्ना नाम तन खट्या आए। पौड़ी मेरा साहेब अत वड्डा सच गैर गंभीरा, सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा। गुरप्रसादी पाई है निश्चल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसै भेटै गुरसूरा। गुणवंती सा लाहया सदा थिर निचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिगत ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुख हमें पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुरप्रसादी को नाम ते आए, तिस हमें विचों जाए। नानक जिस पूर्व होवै लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हो मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटा, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेख, दिखा किने केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईये खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनों आख सुनाई है।

आए पीवत अमृत नाम जानो नामे रहे अगाए। सलोक महला पंजवा कोट बिगन तिस लागते।

कड़ी मोहतन है विसरै नानक रवि है नित पौड़ी सूर वीर वरियाम केने ना होड़ी है फौसतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराद बिखम दल फोड़ी है हों तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवां किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटे पूरी होवे जुगत हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे होवे मुकत पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परमगढ़ तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ महारोग बिकराल उतने बिदारुओ पाया नाम निदान बहुत खजानिया जिता जन्मया पार आप पछानिया महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव सलोक महला पंजवा उद्यम करेंदिया जियो तू कमावद।

जो तेरा रंग रफ्ते से जोनना जोवना अंतर बार एक नैणा लोवना जिनी पछाता हुक्म तन कदे ना रोवना नाव नानक बख्शीस मन माहे प्रोवना। श्लोक महला पंजवां जीवन दया ना चेत्यो मुआ रल लंदड़ो खाक नानक दुनिया संग उदारिया सागत मूड़ नपाक। महला पंजवां जीवन दया हर चेत्या मरन दया हर रंग जन पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी आदि जुगादी आप रखण वालिया सच नाम करतार सच पसारिया। ऊना कही ना होए कटे कट सारे।

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै सह बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हों पूजो दूजा नजर न आई। एक है पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला, मलै ना लाछै पार मलो। परम लियो बैठोरी आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कह किन बूझी है, रमैया या कुलरी बाई। रहाओ ज्यों आकाश है पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यों जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यों आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिन तीने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछर थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोच

काहे भया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं कीन्या परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम सान की पसम लगाई गुरबिन तत ना पाया। काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडलो कापड़ियारे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भाव रतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर शरणं हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं पवपूत सर्वगतं एक ओवंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंग गुरप्रसाद राग देवगंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधियारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सारे अवर ना लागे देवगंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाओ प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है पली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली एको प्रेयो सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा पली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ हाँ फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगुली है सतगुर पुरख मनावो अपना हरे अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार।

ठाकर प्रभ तुमरी तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो तिस बरिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिले जूठारी। हमरे जिए होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़े आरी। हमरी मुंदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण द्वारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नकटी, जो बेसवा के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रगटी रहाओ। जिनके हृदय नाहे हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरगटी। ज्यो निगुरा बहु बाता जाने, ओहो हर दरगह है प्रस्टी। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकटी। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पाछे शुकटी। शक्का एक देव गंधारी महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुरचरणी चित लाइए, प्रभ होए कृपाल कमर पर गासे। सदा सदा हर त्याईए रहाओ, अंतर एको बाहर एको, समय एक समाई है। घट अवकट रविया सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है। उस्तत कर है सेवक मुन के ते, तेरा यंतना कतहूं पाई है। सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सदबल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है, राच रहे ओ रचना प्रभ अपनी। कहां लाभ कहां खोई है रहाओ, कह फूले आनंद बिखे सोग। कब हसनो कब रोई है, कब हूं मैल भरे अभिमानी। कब साधु संगत होई है, कोई न मिटे प्रभ का किया। दूसर नाही अलोई है, कहो नानक तिस गुर बलिहारी। जे प्रसाद सुख सोई है, देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर तेर तजो अभमाना, शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कह सोई पल मानो, नाहिन का बोल कर दो। निमख ना बिसरो ही ए मोरे ते, बिसरत जाई हम मरत। सुखदाई पूर्ण प्रभ करता, मेरी बहुत अयान पजरत। निर्गुण कुरूप कुलीन नानक हौ, आनंद रूप स्वामी भरत। देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं, गावत सुनत जब तो उधार है। बरन्या बरना सब हूं रहाओ, जहते उपजो तही समान्यो। जहते उपजो तही समायो, एह बिद जानी तब हूं। जहां जहां एह देही तारी, रह ना पायो कब हूं। सुख आयो पै परम बिनासे, कृपाल हुए प्रभ जब हूं। कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, साह संग तज लब हूं। देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो, नीचो नीच नीच अत नाना, होए गरीब बुलावो रहाओ। अन के अडंबर माया के बरथे, तासो प्रीत कटावो। ज्यो अपनो स्वामी सुख मानै, ता मैं शोभा पावो। दासन दास रेण दासन की, जन की टैल कमावो। सर्व सुख वडियाई नानक, जीवो मुखो बुलावो। देव गंधारी प्रभ जी तौ प्रसाद भ्रम डारियो, तुमरी कृपा ते सबको अपना। मन में यह बिचारियो रहाओ, कोट प्राद मिटे तेरी सेवा। दर्शन दुख उतारियो, नाम जपत महासुख पायो। चिंता रोग बिदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बिसारियो। माया बंद काटे कृपा निध, नानक आप उधारियो। देव गंधारी
ਮਨ ਸਗਲ ਸਿਆਨ ਪਰਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਨਕੇ ਉਠ ਗਹੀ ਰਹਾਓ ਆਪ ਮੇਟ ਪਏ ਸਰਨਾਈ ਇਹ ਮਤ ਸਾਧੂ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਲਹੀ ਜਾਨ ਪਰਬੀਨ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਅਹੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪ ਨਹਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਮਨਾ ਪਹੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹੂ ਜਾਤੇ ਰਹਾਓ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ ਰੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਲਾਲ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ਮਹਾਂ ਕਿਰਵਖ ਕੋਟ ਦੋਖ ਰੋਗਾ ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਤੇ ਸੋਭਤ ਜਾਗ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਿਓ ਨੈਣੀ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬੈਣੀ ਰਹਾਓ ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰਾ ਸੰਤੀ ਕਟਿਆ ਜੀ ਦਾਨ ਗੁਰ ਦੇਣੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ ਜਲਤੇ ਸੀਤਲ ਹੋਣੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਛ ਉਪਜ ਨਾ ਆਇਓ ਨਹਿ ਉਪਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸੰਜਮ ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਹਾ ਗਤ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾਨੰਦਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਫਾਹਾ ਰਹਾਓ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰਿਓ ਹਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਾਇਆ ਤਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਨਿਧਾਨਾ ਜਿਨ ਕਹਿ ਕਰਮ ਲਿਖਾ ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਕਹਿ ਅੰਕਾਰ ਅਫਾਰਾ ਦੁਰਗੰਧਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਅਪਾਵਨ ਭੀਤਰ ਜੋਦੀ ਸਹਿਸੋ ਸ਼ਾਰਾ ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਧਾਰਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਲਪਟਾਵੈ ਮਰਜਨ ਮੈਂ ਮੂਦ ਗਵਾਰਾ ਅੰਧ ਕੁੰਗ ਗੁੰਗ ਪਿੰਗਲ ਮਤਹੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰੈ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਿਮਰ ਧਿਆਏ ਗਾਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੈ ਰਹਾਓ ਉਦਰ ਦੇਹ ਦੁਲਭ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇਰੈ ਕਰੀ ਨਾ ਮੋਹਤ ਨਾ ਚਸਾ ਬਿਲੰਬੋ ਕਾਲ ਨਿਤੈ ਨਿਤਹੇਰੈ ਅੰਧ ਬਿਲਾਤੇ ਕਾਡੋ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਘਨੇਰੈ ਸ਼ਕੇ ਦੋ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਜੀਵਨ ਕਾ ਮੂਲ ਬਾਧਿਓ ਰਹਾਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਕੀਨੋ ਕਾਟੇ ਮਾਇਆ ਫਾਦਿਓ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗਾਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਮਕਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧਿਓ ਪਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਮਿਟਿਓ ਮੋਰਚਾ ਅਮੋਲ ਪਦਾਰਥ ਲਾਦਿਓ ਬਲਿਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਲਖ ਬੇਰਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਅਗਮਿਆ ਗਾ ਦਿਓ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਫਲ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਫਲ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵਲਾਵੈ ਰਹਾਓ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸੂਰ ਸੋ ਬੇਤਾ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਕਰੇ ਹਰ ਰਸਨਾ ਬਹੁਣ ਨਾ ਜੋ ਨੀਤ ਆਵੈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰਵਿਆ ਮਨ ਤਨ ਮਹਿ ਆਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੈ ਨਰਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਤ ਜਨ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਲੜ ਲਾਵੈ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਚੰਚਲ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਉਰ ਜਾਇਓ ਇਤਨੀ ਨਾ ਬੂਝੈ ਕਬਹੂ ਚਲਨਾ ਬਿਗਲ ਪਇਓ ਸੰਗ ਮਾਇਓ ਰਹਾਓ ਕੁਸਮ ਰੰਗ ਸੰਗ ਰਸ ਰਚਿਆ
बिखिया एक उपायो, लोभ सुने मनसो कर माने, बेग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो, संत द्वारे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा सर्व सुखा गुर चरना, कालमल डारन मने सुधारन, ए आसर मोय तरना रहाओ। पूजा अर्चा सेवा बंदन, एह टहल मोहे करना, बिकसै मन होवे परगासा, बहुर ना गर्भ परना, सफल मूर्त परसौ संतन की, एह त्याना तरना। पयो कृपाल ठाकर नानक, पर्यो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा, अपने हर पै बिनती कही है, चार पदार्थ अनंत मंगल निध, सुख सहज सिद्ध लही है रहाओ। मान त्यागो हर चरणी लागो, तिस प्रभ अंचल गही है, आंच ना लागे अग्न सागर ते, शरण स्वामी की अही है। कोट प्राद महा अकिरत कान, बहुर बहुर प्रभ सही है, करना मैं पूर्ण परमेश्वर, नानक ते शरण ही है। देव गंधारी पंजवा, गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख बिनासे, उतरे सगल कलेसा रहाओ। जन्म जन्म के किल बिखनासे, कोट मजन इशनाना, नाम निदान गावत गुण गोविंद, लागो सहित्याना। कर कृपा अपना दास कीनो, बंधन तोर निरारे, जप जप नाम जीवा तेरी बाणी, नानक दास बलिहारे। शके तेनो देव गंधारी महला पंजवा, माई प्रभ के चरण निहारो, करो अनुग्रह स्वामी मेरे, मन ते कहो न डारो रहाओ। साधु तूर लाई मुख मस्तक, काम क्रोध बिख जारो, सब ते नीच आत्म कर मानो, मन में ओ सुख धारो। गुण गावे ठाकरे अबनासी, कलमल सगले चारो, नाम निधान नानक दान पावो, कंठ लाए और तारो। देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा, सुंदर ध्यान तादर रैनी, जी प्राण ते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके, सिमरत तत् विचारा, दीना नाथ प्राण पथ पूर्ण, पावजल उदर नहारा, आद जुगाद भगत जन सेवक, ताकी बिखै आधारा, तिन जन की धूर बांछै नित नानक।

प्रेम रसाने जाको उपजी छोड़ न कत हूं जाता रहाओ। बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधो बोजोनी परमाई है टिकट ना पावे बिन सतसंगत किसी आगे जाय रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पय कृपाल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ। हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया। पारे उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ

तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाऊं साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवां प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा रहाओ। प्रातः काल लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावां तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावां। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिया एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लईऐ। राग देव गंधारी महला पंजवां घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना सम सर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रोण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माणे गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन याचै भ्रम आयो है सगल थान रे आहे पर्यो संत पाछै रहाओ। किस हौ सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाचै साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांछै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छ आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछ। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रवचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहू मद निरारे रहाओ। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण पर्यो संत हारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार्यो तार्यो दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुले समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा घर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार रहाओ। कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा घर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद मैं पेख्योरी उचा मोहन सबते उचा आना सम

ज्यों बैसंतर काष्ट मझार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावै गो हर जी को द्वार मिल संगत तज अभमान कहो नानक पाए है परम निधान देव गंधारी पंजवा जानी ना जाई ताकी गात रहाओ कह पे खा रहा हूं हाँ कर चतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक